देखे दूर जाकर बैठे हैं, अब किसी से पूछो कि मेरा खता क्या है। दोस्तों सब कुछ भुला दिया, ये मेरी वफा का कैसा सिला दिया। सब कुछ भुला दिया, ये मेरी वफा का कैसा सिला दिया। मौत हमें आते नहीं और जिंदगी हम ये पते नहीं।

अगर आपकी आंखें किसी को देखे तो उसको क्या पता है कि उसका हाल क्या होता है। हमारे यारों की कहते हैं, रोए तो बहुत तेरी बेवफाई की बात, रोए तो बहुत तेरी बेवफाई की बात, तेरे याद ना गई तेरी जाने की बात। तुम हमेशा खुश रहना, तुम हमेशा खुश रहना, बस मेरे साथ किया ये एक वादा निभाने। और हम चलते हैं मैं चली परमा श्री मोहम्मद रफी नाइटिंगेल लता मंगेशकर का ये लवली सॉन्ग आओ सुना जाए।

और मैं चली ना, और मैं चली। और ये गीत है परमाश्री मोहम्मद रफी का और लता जी का, नैतिकी लता जी का ये जोंग है हमारे यारो। और इसके बाद और आगे का प्रोग्राम हम आपको जरूर शायद, तो हम चलते हैं और आगे को हमारे यारो क्या कहते हैं कि पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है, किसी को चाहो तो सच्चा दिल से, क्योंकि जिंदगी फिर कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं यारो। तो हम चलते हैं गीत की ओर, और गीत है आपकी करीब हम रहते हैं, तो हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और कहते हैं दोस्तों, पलकों से आंखों की हिफाजत होती है, धड़कन दिल की अमानत होती है, है में हमारे रिश्ता भी बड़ा प्यारा है, कभी चाहत तो कभी शिकायत होती है, हमारे यारो। और ये प्यार भरी गीत हम आपके लिए, और इससे गीत जो है दोस्तों ये है ओ मेरे दिल की चैन, जिसमें रजेश खन्ना ने काम किया है, किशोर कुमार, एक रोमांटिक फॉल प्यार भरी गीत है जो हम आप लोग को चलाते हैं।

और दोस्तों ये प्यार भरी गीत जो है और ये मस्त भरी गीत है किशोर जी के, किशोर दादा जी इस गीत को गाए है। ये गीत जो है जो अब हम चलाने जाते हैं वो है काली काली काली काली यार लता जी का, नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है, लता जी के सॉन्ग है कि मैं चाहूं सपनों में भी साथ उसका हूं, इन हाथों में मेरी बस हाथ उसका हूं, चाहत मुझे इतना है उसे कि दिल मानता नहीं, कोई मेरे बात उसको बता देते। तो हम चलते हैं काली काली राती और काली काली राती याद सताते हैं, तो इस गीत आओ मिलकर सुना जाए।

और काले काले रतिया ये याद सताते हैं, काली काली रतिया याद सताते हैं हमारे यारो और यारो, तो ये बात है हमारी काली काली रतिया के बारे में। तो कहते हैं हमारे यारो, क्या कहते हैं कि प्यार का बदला कभी चुका ना सकेंगे, चाह के भी आपको भुला न सकेंगे, चाह के भी आपको भुला न सकेंगे, आप ही हो मेरे लबों की हस्ती, आपसे बिछड़ जाने तो कभी मुस्कराना न सकेंगे। तो उलझन सुलझे ना की ओर हम चलते हैं।

हर कुछ कन यानी कि गीतों की बहार प्रोग्राम यहां से हम शुरुआत करते हैं कि भरोसा इतना करो कि याद ऐसा करो कि हाथ ना हो, भरोसा इतना करो कि शक ना हो, इंतजार इतना करो कि कोई वक्त ना हो, प्यार ऐसा करो कि नफ

और हमसे तो हमारे लयस्तरार से प्यार हो गया है, और अगर आपको भी प्यार होगा तो हमें जरूर बताना कि आपको क्या और किससे प्यार हुआ है। अगर यह हो सके तो हमसे बता देना कि कहते हैं काश वो मुझे सीने से लगाकर मेरी सारी शिकायत दूर कर देते, काश वो मुझे सीने से लगाकर मेरी सारी शिकायतें दूर कर दे, मैं सिर्फ उनका हो जाऊं, मुझे वो इतना मजबूर कर दे कि हकीकत कहो उनकी ख्वाब लगता हूँ, हकीकत कहो उन्हें ख्वाब लगता हूँ, शिकवा करूँ तो उन्हें मजाक लगता है, शिकवा करूँ तो उन्हें मजाक लगता है, कितने जिद्दत से हम उन्हें याद करते हैं, एक वो जिन्हें ये सब कुछ मजाक लगते हैं। अगर जो शादी करना है तो जॉनी को याद कर लेना और मेहनी लगा कर बढ़ जाना, कल हो ना हो और कल हो ना हो लेकिन जॉनी को याद कर लेना। फिल्म के नाम है कल हो न हो और मेहनी लगा करे मेरा तलाश।

और माही कल हो ना, कल हो ना हो हमारे प्यारे जनता की कहते ही दर्द क्या होता है, ये जो दर्द जो है ना वो क्या होता है बताएंगे किसी रोज अपनी अपनी दिल के गजल जॉनी सुनाएंगे किसी रोज, दर्द क्या होता है जॉनी बताएंगे किसी रोज अपनी दिल के गजल सुनाएंगी किसी रोज, उन दिनों उन्हें दो परिंदों के खुली फिजाओं में हमारे होंगे तो लौट कर आएंगे एक रोज जरूर मेरी कब्र की मचान पर आईना लगा देना, मेरी कब्र के मचान पे और मेरी कब्र के मचान पर आईना लगा देना, उसे देखने की आखिरी उम्मीद अभी तक बाकी है हमारे दोस्त, तो हम चलते हैं मिलने के, तुम कोशिश जरूर करना, मूवी का नाम है दिल का क्या कसूर और कुमार शानू आशा जी का ये गाया हुआ बेमिसाल लवली प्यार भरी गीत है।

और वादा तो और जरूर टूट जाता है कभी कभी, वादा जो लोग करते हैं वो टूट डालता है कि कहते हैं कोई गलती हो जाए तो दांत लिया करो, कोई गलती हो जाए तो डांट लिया करो, मगर यो रूठा ना करो हमसे, क्यों रूठा न करो हमसे, पागल सा पागल सा बच्चा हूँ मगर दिल का सच्चा हूँ, थोड़ा सा आवारा हूँ मगर तेरे ही दीवाना हूँ, कि कल हो न हो लेकिन जोनी का प्यार आपके साथ हो।

और बड़ी गुमान प्रति वो मन कहो ना कल हो ना हो, शाहरुख का ये फिल्म है। और उसके बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को चलाते हैं, बनाते हैं, सुनाते हैं। हमारे यारो नखमाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और रेडियो के जरिए आपको हम और कुछ मिली जुली गीत से सेवा करते हैं कि कहते हैं, सुनो तुम अपना ख्याल रखा करो, सुनो तुम अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा और कोई नहीं है। बस इतनी सी है चाहत तुमसे, बस इतनी सी है चाहत तुमसे, कभी दूर जाओ तुम जोनी के नजरे से, तेरे बिना हो जीना ऐसा दिन कभी न आए मेरे यारो, न जाने मेरे ये दिल कहाँ खो गया, तुझे पहली दफा देखा और तेरी हो गया, और तेरे दर से दिल अबात रहा। फिल्म के नाम है दीवाना, मूवी का नाम है जिसमें शाहरुख खान ऋषि कपूर देविया भारती ने काम किया है, और एक दर्द भरी प्यार का सॉन्ग जो कुमार शानू आपको यहां से सुनाते हैं।

पूरी छम्मा ही छम्मा है, और छम्मा के बाद कौनची होता है, हम वो आशिक है जो स्कूल छोड़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में हुआ आशिक तो को नहीं, लेकिन स्कूल में हुआ आशिक को नहीं, तो मेरी जिंदगी के वो खुशी है जिसे मैंने अपनी दुआ में मांगा है। हमारे यारो, तो प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम है। हम यही कहते हैं हमारे यारों कि प्यार करना कोई छोटा बात नहीं है। कैसे छोड़ दूँ तुम्हें, प्यार करता हूँ तुमसे बस चाहत ही नहीं, और ज़रूरत हो तो मेरी जरूरत हो तो मेरी, प्यार मोहब्बत आशिक ये सब बस अल्फाज ही थी, लेकिन जब तू मिली मुझे जिंदगी में इन अल्फाजों की मजा ही बदल गई। तो और है दोस्तों प्यार भरी नगमों का बहार प्रोग्राम, यहाँ से हम चलाते हैं कि दुख की शाम हो या हो सुख की सवारे, और सब कुछ अच्छा लगता है जब साथ हो तेरा। तो ये बात सच है कि तुझे मेरे प्यार पर यकीन नहीं होता, लेकिन मेरे ये दिल है जो तेरे सिवा कहीं और नहीं होता है हमारे यारो। तो ये गीत है, फिल्म के नाम है अप्रैल फुल, और हम चलते हैं एक मस्त भरी प्यार भरी मोहब्बत भरी गीत की ओर।

और आ गले लग जा, फिल्म के नाम है अप्रैल फूल का ये, और ये प्यार भरी गीत फिल्म के नाम है यहूदी सॉन्ग, ये मेरा दीवाना है। दिलीप कुमार, मीना कुमारी इस फिल्म में काम किए, द सिंगर इज माइती मुकेश।

दीवानापन है। और ये है नाइटिंगेल मुकेश जी के आवाज में इस गीत को हमने चलाए है। हमारे दोस्तों परियारों क्या कहते हैं कि कहते हैं कि मेरे दिल की यही है दुआ, कभी दूर तुम ना जाना, तेरे बिन हो जीना, वो दिन कभी ना आए। तो हम सुनते हैं।

और मैं सोनिया और परमाशीन मोहम्मद रफी का और नतिल गिल लता जी का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं कि तेरी और मेरी रातों में बस इतना फर्क है, तेरी रातों को नाक बजता है और मेरी रातें रोकर

भी सुनते हो, अगर आपको थोड़ा सा पकड़ आ जाएगा तो आप जरूर से इसे भी गुनगुनाने लगते होंगे। और साथ ही साथ मेरे ख्याल से आपको वो सब ख्याले जो है ताज़ा करा देते हैं। रफ़ी जी की आवाज़ में हमने श्रवण किए फिल्म का नाम दोस्ती।

दूसरों के परेशानियाँ का आनंद ना लिया करो, कहीं भगवान आपको वो गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलती है। तो इस पर हम जरूर से ख्याल रखें और ध्यान धरें।

दृष्टि नहीं, दृष्टि नहीं बल्कि दृष्टिकोण सही होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको यहाँ पर हम जरूर सुनाना चाहती हूँ, तो यहाँ से हम मिलकर सुने। एक अंधे को मंदिर आया देखकर, एक अंधे जो नेत्रहीन है, सूरदास है, उनको मंदिर में आया देखकर लोग हंस कर बोले, मंदिर में आए हुए लोग एक अंधे को देखकर बोले कि मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? ये सवाल किया है जो जिनका नेत्र है, जो देखते हैं, और वो सवाल करते हैं जो नेत्रहीन है कि मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? तो वो नेत्रहीन सूरदास अंधे ने मुस्कुरा के कहा, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे भगवान को, मेरे भगवान तो मुझे देख लेगा, इसलिए दृष्टि नहीं दृष्टिकोण सही होना चाहिए। वो अंधा बोध सूरदास क्या सुंदर जवाब दिया कि क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे भगवान तो मुझे देख लेगा।

पता नहीं जिंदगानी का, वो तो बात सही है। अगले पल क्या होने वाला है ये तो मुझे भी नहीं खबर है मेरे दोस्तों। आपको बताती हूँ कि पेंसिल और पेन इन दोनों का अंतर क्या है। हाँ आप तो कह देते होगे, हाँ पेन और पेंसिल में अंतर है। पेंसिल जो है हम कहते हैं अपनी भाषा में पतलोत। पतलोत और पेन के बारे में, पेन और पेंसिल के अंतर जानिए जो जिंदगी से मतलब रखती है। पेन और पेंसिल के अंतर जानिए जो जिंदगी से मतलब रखती है। तो चल के हम यहाँ से जानेंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं ना मेरे दोस्तों, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल के बदले हमें पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। एक बच्चा जो शुरुआत करते हैं, या आप भी बड़े हैं जो शुरुआत करते हो कुछ लिखना चाहते हो, तो काफ़ी तौर पे पतलोत से लिखा जाता है, ताकि हम उसे कुछ गलती हो तो हम उसे सुधार सके। और अगर आप पेन से लिख दिए तो उसको सुधारना तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो यही अंतर है पेन और पेंसिल में।

लता जी की आवाज ये सुंदर सा गीत पेश किया गया। फिल्म का नाम धूल का फूल और गीत का बोल तो आपने सुन ही लिया है कि तू मेरे प्यार का फूल है, पर ये भी एक फूल हो गया है। हल्के फूल की सी है जिंदगी, हल्के फूल की सी है जिंदगी, बोझ तो बस खुशियों का है, बोझ तो बस खुशियों का है।

फिल्म नागिन से ये सुंदर सा गीत। लता जी की आवाज में ये जो हम सोचते हैं, सुनने वालों, जो हम सोचते हैं वो सोच का प्रभाव मन पर होता है। जो हम सोचते हैं वो सोच का प्रभाव मन पर होता है, और मन का प्रभाव जो है वो तन पर होता है, यानी लेखाम पर। तो तन और मन का दोनों प्रभाव सारा जीवन पर होता है। मेरे दोस्तों, इसलिए प्यारे दोस्तों, भाई बंधु, सदा अच्छा सोचे और हम सब खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहें।

ख़त्म होने जैसा ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, ख़त्म होने जैसा ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई सुबह आपका हम सबका इंतज़ार करते हैं, हमेशा एक नई सुबह आपका हम सबका इंतज़ार करते हैं मेरे दोस्त। कम लोग हो पर अपने हो, कम लोग हो पर अपने हो, ज़िंदगी तमाशा थोड़ी तो है, ज़िंदगी तमाशा तो नहीं कि भीड़ चाहिए। खोए हुए चीज़ अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, खोए हुए चीज़ अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, जैसे कि वक्त और बचपन।

हम क्या कहें, हम तो भी बेशब्द हो जाते हैं। ये सुंदर गीत फिल्म का नाम 20 साल बाद, 20 साल बाद फिल्म से निकाला गया लता जी की आवाज़ में, कि कहीं दीप जले और कहीं दिल। मंदिर, मंदिर का मतलब मन और दीर, मन के अंदर जाना ही मंदिर है और अंदर जाने का रास्ता केवल ध्यान है। आनंद वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ जहाँ मन मिले।

एक दिव्य शक्ति जो इस संसार को चला रही है, एक दिव्य शक्ति जो इस संसार को चला रही है, उससे यही प्रार्थना है, उससे यही प्रार्थना है कि वो हम सब का भला करे, हम सब का खुश रखे, हम सबको खुशी रखे, हम सबको निरोग रखे, हम सबको आत्मिक शक्ति प्रदान करे।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, फिल्म का नाम इज्जत सदाबहार, गीत आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है मोहम्मद रफ़ी जी और लता जी। ये सुंदर सा गीत मिलके और फरमा दी है, अच्छा बनो मेरे दोस्तों, अच्छा बनो। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप, भगवान, अपने आप के लिए, अपने आप के नज़र में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या, दुनिया वालों का क्या, वो तो आपके तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी में हंसेंगे।

लता जी, लता जी की आवाज़ में फिल्म का नाम गुमनाम है, कोई नहीं, फिल्म का नाम तो गुमनाम है, टाइटल सॉन्ग वही फिल्म से निकाल दिया गया है कि गुमनाम है। किसी ने रोज़ा रखा तो किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोज़ा रखा तो किसी ने उपवास रखा, कबूल और स्वीकार उसी का दुआ प्रार्थना हुई जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। जमाने से मोहब्बत निभाने वाले, जमाने से मोहब्बत निभाने वाले, पहले उससे तो मोहब्बत निभाओ जिसने तुम्हें जन्म दिया है।

नहीं खाई ठोकर सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है। एक बार फिर मेरे सुनने वालों, बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है।

क्या खूब फरमाए कि अगर तुम साथ हो तो धीरे धीरे गम जो है वो भी फिसल जाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होई। अर्थ इसका है, हालात चाहे जैसे भी हो हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। हालात जैसे भी हो हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक ही दिन 100 घड़ा पानी किसी पेड़ में डाल दे तब भी वो पेड़ में फल समय आने पर ही लेगा। आप जुड़े हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से, मेरे आप सभी को बहुत सारे प्यार मिले।

स्वीट स्वीट रोमांटिक सॉन्ग आपके लिए यहाँ से चला दिया जाता है। रिश्ते के पहचान, मेरे प्यारे सुनने वालों, रिश्ते के पहचान सुनिएगा। लोग कहते हैं कि सिर्फ एक गलती से, गलत फैमिली से अच्छा रिश्ता तोड़ देती है। गौर से सुनिए, लोग कहते हैं कि सिर्फ एक गलती से, यानी कि एक गलत फैमिली से अच्छा रिश्ता तोड़ देते हैं। एक गलत फैमिली से अच्छा रिश्ता टूट जाता है तो फिर आप सब बताइए कि जो रिश्ता एक गलत फैमिली से टूट गया वो रिश्ता अच्छा कहाँ से हुआ? आप ही तो बताइए कि जो रिश्ता एक गलत फैमिली से टूट जाए वो रिश्ता कहाँ अच्छा हुआ? इसका मतलब है कि वो रिश्ता मौका ढूंढ रहा था सिर्फ एक गलती के लिए, जो नहीं होना चाहिए। रिश्ता सच्चा और अच्छा हो तो जो हजार गलतियां के बाद भी टिका रहे, बना रहे। रिश्ता सच्चा और अच्छा तो वो होता है जो हजार गलतियों के बाद भी टिका रहे, बने रहे। ये मेरे सुनने वालों कि रिश्ता सच्चा और अच्छा वो होता है जो हजार गलतियों के बाद भी टिका रहे, बना रहे।

पवन की है मोहम्मद रफी जी की आवाज में। हम अक्सर सुनते हैं कि कलयुग आ गया है, कलयुग का समय चल रहा है, तो प्रश्न उठता है ये कलयुग लाया कौन, ये कलयुग लाया कौन मेरे दोस्तों। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, पर लाया कौन ये सवाल उठता है। स्त्री, ज्यादा तौर पे स्त्री अपना शर्म भूल गए, पुरुष अपना संस्कार भूल गया, गुरु अपना धर्म, नेता अपना कर्म, नेता अपना कर्म, और तो और इंसान अपनी इंसानियत भूल गए। तो आप बताओ कलयुग लाया कौन। ये सच में एक सोचनीय वाला बात है कि कलयुग लाया कौन।

हो मोरे रामा, अजब तेरी दुनिया, रफी जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर लिए। जीवन के कुछ नियमों जो जीवन में उतार सके, जीवन के कुछ नियम जो हम अपने जीवन में उतार सके तो जरूर से उतारे, और वो हम यहाँ से एकाध जो है उसको बता देती हूँ। मेहनत से पीछा हटाना नहीं, जरूर हमेशा मेहनत करना, जरूर आगे बढ़ेंगे। मेहनत से पीछा हटाना नहीं मेरे दोस्तों। बदलने वाला दोस्त बनाना नहीं। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ जाना नहीं। अगर दुख आए तो घबराना नहीं। मुस्कुराने की आदत कभी छोड़ना नहीं। सदा मुस्कुराते रहे। आंखें बंद करके दूसरों पर विश्वास करना नहीं मेरे दोस्तों। आंख बंद कर दूसरों पर विश्वास मत करना। सत्य पर रूठे जाए उसे मनाना नहीं, और जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। सरल से बात यह है।

रफ़ी जी की आवाज़ में यहाँ से हमने एक बार फिर श्रवण की है। मेरे प्यारे दोस्तों, दूर दूर से आप श्रवण कर रहे फावन हिंदुस्तानी रेडियो को, और आपको हम यहाँ से दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। कल की चिंता छोड़िए यारो, जी हाँ, कल की चिंता छोड़िए, आज में ही जी लो, क्योंकि जिंदगी का जिंदगी से दूर होने में वक्त नहीं लगता। छल कपट और पाप उतना ही करना मेरे दोस्तों, छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भोगने की शक्ति हो, क्योंकि मेरे दोस्तों कर्म किसी का भी नहीं छोड़ते, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते।

तेरा मस्त मगन लहराए सुंदर सा रोमांटिक गीत आपके लिए पेश किया जाता है, द एनख एख्त फाउन जिस पर आप चुने दूर दूर से आप सुन रहे सुनने वालों व्हाट्सएप पे बरह आता है और हम यहाँ से आपको भी दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, मेरे दोस्त जो भी कमाया यही रह जाना है, कर ले कुछ अच्छे कर्म, कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरा जाना है। ये लाइन भी बहुत अच्छा है, ज़रूर से सुने कि रोने से तो आंसू भी पराया हो जाता है, रोने से भी आंसू पराया हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से, जी मेरे दोस्तों, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। इंसानियत दिल में होते हैं, हैसियत में नहीं, ऊपर वाला कर्म देखता है,

अरिजीत सिंह से हाँ यहाँ से हाँ सुने हम कि दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। हाँ दिल भी है जो मानता नहीं पर मोहब्बत करने चल जाता है। अभिमान अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आप कुछ किया है। यही फर्क है अभिमान और सम्मान में। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। यही अंतर होता है अभिमान में और सम्मान में। ये दो लाइन भी बहुत सुंदर है। सृष्टि और दृष्टि। सृष्टि कितनी भी बदल जाए फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते। सृष्टि कितनी भी बदल जाए फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते पर दृष्टि जरा सी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं।

जिंदगी का सफ़र भी अजीब है मेरे दोस्तों, कि जिंदगी का सफ़र भी अजीब है, बिना कुछ लिए आता है, हर चीज़ के लिए लड़ता है और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाता है।

कबीरा फुल सॉन्ग, फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी। उस फिल्म में रणधीर कपूर जो सुपुत्र है नीतू सिंह, ऋषि कपूर का सुपुत्र है रणधीर कपूर, दीपिका पादुकोण के इसमें जो अपना कलाकार दिखाए है। दर्द दर्द मेरे दोस्तों, दर्द वही देता है जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं। दर्द वही देता है जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं। गैर गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर माफ़ी मांग लिया करते हैं। बड़ा कठिन बात है ना कि दर्द वही देता है जिन्हें हम अपना हक देते हैं, अपना समझते हैं। दर्द वही देता है जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं। गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर माफ़ी मांग लेता है। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथों में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगता। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। तो आप भी बड़े हैं, आप भी समझदार हैं, तो आप जरूर से अपना समझे।

भाई बहन की आवाज की मिले हो तुम बड़े नसीबों से। नेहा कक्कर, टोनी कक्कर, ये भाई बहन जो सुना दी हमको।

मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, आप अपनी व्यक्तिगत कहानी की राह पर जो भी कदम उठाते हैं वो आपको और आपके आसपास की दुनिया को बदल देता है मित्रों, बिल्कुल बदल देता है। बेस्ट आंसर एल्क स्टॉप दी जेत ऑफ वेखनारिय परसोंलक लखेंद फरांदत यो एंड वीरल ओम यही। रात बदलती है पर सपने नहीं, रास्ते बदलते हैं पर किस्मत नहीं। उम्मीद हमेशा बनाए रखें मित्रों, क्योंकि किस्मत बदल सकती है पर वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। द नख्त फरांदर्त मार द्रोमन नित, बेस्ट मैंसन द्रोमन नित द्रोमन फरांदर नित पादन फरांदरन मार है लौत नित हो altijd hoop, want geluk kan veranderen, maar de tijd verandert zeker. De tijd verandert zeker, beste mensen. Swikaar karna, sabse khoobsurat shabdon mein se ek hai. Yah shanti, sukoon aur tension se azadi lata hai. Mitron, swikaar karna, accepteer karna. तो acceptatie is een van de mooiste woorden, beste mensen. Het brengt vrede, rust en bevrijding van spanning met zich mee, beste mensen. Houd dit goed vast, want dit kan je in je leven gebruiken, beste mensen.

भाई बहनों, आपके आसपास अच्छे लोगों का होना सबसे बड़ा मूल्य नहीं है। सबसे बड़ा मूल्य नहीं है कि आप उनसे क्या पाते हैं, बल्कि ये है कि उनके साथ रहकर आप कितने बेहतर इंसान बनते हैं। मित्रों, ये है पलांगर, ये है मूल्यवाद। किसी के साथ रहकर आप कितने बेहतर इंसान बन सकते हैं और बनते हैं। मित्रों, द ह्रुस्त वार्द फन हुद मैंसन ओम यहीन इस नित वच फंज क्रेख मर द बेतर परसून दी वर्त दोर बैजत जैन। Dat is belangrijk, beste mensen. Dat moet je goed onthouden met welke mensen je omgaat en waarom doe je dat. Dat zijn belangrijke dingen, beste mensen.

साथियों, अपने सपनों को एक दृष्टि में बदलें, फिर एक लक्ष्य, फिर एक योजना और अंत में वास्तविकता। आखिरकार एक लक्ष्य एक समय सीमा के साथ एक सपने से अधिक कुछ नहीं है। मित्रों, सपने से कुछ अधिक नहीं है। आप देखते हैं अपने आसपास में लोगों को, मार्क फन ये ड्रोम एंड फिसी डन एंड डूल डन एंड प्लान एंड एंडलक द रियलिटेट बेस्ट मैंसन द रियलिटेट एंड डूल इज एमर्स नीड्स मेयर डन एंड ड्रोम मेट एंड डेड लाइन बेस्ट मैंसन नीड्स इज meer dan een droom. Dit moet u weten, want dit ziet u elke dag bij mensen die heen gaan. Niets gaat mee, beste mensen.

साथियों, समय के पास हमें ये दिखाने का एक अद्भुत तरीका है कि कौन और क्या वास्तव में मायने रखता है। मित्रों, एक अद्भुत तरीका है। द तैथ हेफ्तन वंडरबार लक मनीर ओम ओंस द लातन जीन वी एन वट एर एह टू दूत बेस्ट मैंसन। एक सार्थक जीवन धन, लोकप्रियता, ऊंच स्तर की शिक्षा या पूर्णता के बारे में नहीं है। ये प्रामाणिक होने, विनम्र होने, स्वयं होने का साहस करने और दूसरों को झूठ को देखने में सक्षम होने के बारे में है। मित्रों, ये झूठ पकड़ने के बारे में है। अनजिन फॉर लेफन द्राइनित ओम रेगदोम पॉपुलरिटेट अन होग ऑपलेनिंग ऑफ परफेक्सी। Het gaat erom authentiek te zijn, nederig te zijn, jezelf durven zijn, beste mensen, en de leugens van anderen te kunnen doorgronden. दूसरों की झूठ पकड़ने के लिए मित्रों, ये है ये तरीका।

मित्रों, परमात्मा इस मौका पर आपकी जिंदगी खुशियों से, आपके दिल को प्यार से, आपकी रूह को रूहानियत से और आपके दिमाग को समझदारी से भर दे। मैं आपके लिए बहुत खुशहाल जिंदगी की दुआ करता हूँ। यही मेरी प्रार्थना है भगवान से आपके लिए। मित्रों, मुख खोत ये लेफन ओफ स्पुलन मैत खलुक अब देश खलेख ने यह हार्ट मैत लिफ द ये जिल मैत स्पिरिचुअलिटेट एंड ये खेस मैत वैस है। बेस्ट मैंसन, एक वेंश अन हेल फ्रोलक लेफन दत इस मैन बेद अन खोत ओफर यू लिफ मैंसन।

दोस्तों, यदि आपके कार्य ऐसी विरासत बनाते हैं जो दूसरों को ज़्यादा सपने देखने, ज़्यादा सीखने, ज़्यादा करने और ज़्यादा बनने के लिए प्रेरित करती है, तो आप एक उत्कृष्ट नेता है या एक सही इंसान हो जो दूसरों को प्रेरित करता है। मित्रों, ऐसे लोगों का कर्म भी अच्छा हुआ है। अल्स दादन अन्नालातन शाप करियर दी आंद्रन इंस्पिरेर ओम मेर्त द्रोमन मेर्त लेरन मेर्त दून एन मेर्त वर्दन दन बेन ये अन उत्स्टेकंद लेडर फोरगांगर अन इंद्रुकवेकंद मेंस मेट goede vooruitzichten en kwaliteiten, beste mensen. Ga zo door met je goede karma.

भाई बहनों, जिसका हृदय सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा से पिघलता है, उसे ज्ञान, मोक्ष, बिखरे हुए केस या शरीर पर भस्म लगाने की रस्म की और क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है। मित्रों, ये सब जरूरी नहीं है, ये दिखावा होता है। आज के ज़माने में बहुत दिखावा होता है। मित्रों, देखिए आप अपने आसपास में, इमंत विंस हार्ट स्मेल्ट फन मीड दोहन फॉर लीफ द वेशंस बेस्ट मैंसन वट हेफ्ट है दान नोह नोदह अन कैनस बफ्रेडिंग warg haar of het ritueel van het insmeren van het lichaam met as. Dit is toch allemaal niet nodig. Niet nodig. Voor de show misschien wel. Voor de show. Wees eerst een mens met het hart op de goede plaats, beste mensen. Wees eerst dat en dan verder.

ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद

सुनने वालों की सेवा में मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। जो बीमार है भगवान से यही प्रार्थना किया जाता है कि आपके तंदुरुस्ती में परिवर्तन आए। जिनके परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा और बधाई दिया जाता है। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें बहुत से बधाई भी और मंगलमय दिवस प्रस्तुत है। जो अपने नौकरी की ओर पढ़ रहे हैं उनके ये कहूंगा कि हर बार की तरह मत भूलना कि गांधी जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये मत सोच हमारा देश हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। जब ये माइंड आप में होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होगा।

कहते हैं जहां सच्चाई है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहां विजय ही विजय है।

जो तैयारी कर रहे हैं स्कूल के ओर बढ़ने के लिए, तो उनके लिए ये कहूँगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं। क्योंकि नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नर उतात्मम देवीम सरस्वती व्यासो ततो जयमुद्रियत। क्योंकि माता सरस्वती का देन बुद्धि और ज्ञान है।

माँ सरस्वती जो आपके जीवन में ज्ञान बुद्धि एवं समृद्धि का वरदान दे, माता की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बने रहे। और जो हमारे देश में सफर पे आए हैं तो उन्हें हार्दिक से स्वागत। से स्वागत करते हुए ये कहूंगा कि आप दुनिया के एक ऐसा सुंदर देश में आए हैं जहां जो स्वर्ग के समान कहा जाता है। अनलॉन्ड फॉल मेट मिशेयस, यहाँ जो रहते हैं अपने शहर को छोड़कर बगल वाले शहर को जब उस पे दृष्टि डालते हैं तो देखा जाए कि कितना बसीन स्वार्थ खेद भी है।

देश यहाँ सुंदर सुंदर मंदिरों भी है। जैसे कि अलमेर पैता में श्री विष्णु मंदिर, दनहाक में सेवाधाम मंदिर, देव मंदिर और राधे कृष्ण मंदिर और राम मंदिर, अगर आप अंस्कदे में रहते हैं तो वहां भी एक मंदिर है, आरनहेम में शिव मंदिर, रोटरडम में शिव मंदिर जो नीचे गुफा के तरह, जरूर जाकर देख जाना। श्रीमती विमला जी जो दनहाक के निवासी है, उनके ओर से ये सुंदर सा शिव तांडव प्रस्तुत करता हूं।

कौशिक नामक एक ब्राह्मण बड़ा तपस्वी थे। तप के प्रभाव से उसमें बहुत आत्मा बल आ गया था। एक दिन वे वृक्ष के नीचे बैठे हुआ था कि ऊपर बैठे हुए चिड़िया ने उस पर बीट कर दिया। कौशिक को क्रोध आ गया, लाल नेत्र करके ऊपर को देखा तो तेज की प्रभाव से चिड़िया जलकर नीचे गिर पड़ी। ब्राह्मण को अपने बल पर गर्व हो गया। दूसरे दिन वे एक सद गृहस्थ के यहाँ भिक्षा मांगने गए। गृहस्थमी पति को भोजन परोसने में लगी थी। उसने कहा कि भगवन थोड़े देर और ठहरो, अभी आपके भिक्षा दूंगी। इस पर ब्राह्मण को क्रोध आया कि मुझे जैसे तपस्वी की अपेक्षा करके ये पति सेवा की अधिक महत्व दे रही है। और तभी गृहस्वामिनी ने देवी दृष्टि से सब बात ज्ञान ली। उसने ब्राह्मण से कहा कि क्रोध ना कीजिए, मैं चिड़िया नहीं हूँ। अपना नियत कर्तव्य पूरा करने पर आपकी सेवा करूँगी। ब्राह्मण क्रोध और करना तो भूल गया। उसे ये आश्चर्य हुआ कि चिड़िया वाली बात इसे कैसे मालूम हुआ।

क्षत्रिय जो ब्राह्मणी थे उनसे पूछने लगा कि ये चिड़िया वाला बात आपको कैसे पता। तभी ब्राह्मणी ने इसे पति सेवा का फल बताया और कहा कि इस संबंध में अधिक जानना हो तो मिथिलापुरी में तुलाधार वैश्य के पास जाइए, वे आपको अधिक बता सकेंगे। भिक्षा लेकर कौशिक चल दिया और मिथिलापुरी में तुलाधार के घर जाकर के पहुंचे।

कौशिक जब मिथिलापुरी में तुलाधार के घर जा पहुंचे तो क्या होता है कि वहां तौल और नाप के व्यापार में लगा हुआ उसने ब्राह्मण को देखते हुए प्रणाम अभिनंदन किया और कहा, तपो धन कौशिक देव जी, आपको उस सत गृहस्थ स्वामिनी ने भेजा है, सो ठीक है, अपना नियत कर्म कर लो, तब आपकी सेवा करूंगा, कृपया थोड़ी देर बैठिए। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बिना बताए ही इसे मेरा नाम तथा आने का उद्देश्य कैसे जाना।

आश्चर्य से घेरे हुए कौशिक बैठे सोच रहे हैं। थोड़ी देर में जब वैश्य अपने कार्य से निवृत्त हुआ तो उसने बताया कि मैं ईमानदारी की साथ उचित मुनाफा लेकर अच्छे चीजें हित की दृष्टि से बेचता हूँ। इस नियत कर्म को करने से ही मुझे ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। अधिक जानना हो तो मगध के नीच जाता चंडाल के पास जाइए। और कौशिक मगध चल दिए और चंडाल के यहाँ पहुँचे।

चलते चलते कौशिक धीरे धीरे मगध आकर के पहुंचे जहां चांडाल का निवास स्थान था। वे नगर की गंदगी झाड़ने में लगे हुई थी। ब्राह्मण को देख करके उसने साष्टगन प्रणाम किया और कहा, भगवान आप चिड़िया मारने जितना तप करके उस सद्गृहस्थ्य देवी और तुलाधार वैश्य के यहाँ होते हुए यहाँ पधारे है, मेरा सौभाग्य है। मैं नित्य कर्म कर लूं तब आपसे बात करूंगा, तब तक आप विश्राम कीजिए।

कौशिक ब्राह्मण आश्चर्य से डूबे हुए और इंतजार कर रहे हैं और चांडाल सब सेवावृत्ति से निवृत्त हुआ तो उन्हें संग ले गया और अपने वृद्ध माता पिता को और दिखा कर कहा, अब मुझे इनकी सेवा करनी है। मैं नियत कर्तव्य कर्मों निरंतर लगा रहता हूँ, इसी से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है।

इन सारे वृतांतों को देखते हुए तब कौशिक की समझ में आया कि केवल तप साधना से ही नहीं, नियत कर्तव्य कर्म निष्ठपूर्वक करते रहने से भी अध्यात्मकता का लक्ष्य पूरा हो सकता है और सिद्धि मिल सकती है।

इस बात का समझ तो आ गया है कि हम कोई काम करें तो प्रण लगाकर सच्चे दिल से

सृष्टि का संदेश आप भी समझ गए होंगे। हमारे कार्यक्रम को सुनने वाले श्रीमती विमला जी, उनके ओर से गीत को मांग किया गया।

कर्म की कहानी तेरी आत्मा भी जाने और परमात्मा भी जाने। धन्यवाद दिया जाता है कि श्रीमती विमला जी जो अपने ओर से ये सुंदर सुंदर गीतों को खोज करके हमारे लिए भेजे हैं। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए

राधा अनंत है, राधा अनादि है, राधा भगवंत है, राधा अवकार है, राधा ब्रह्म है, राधा शक्ति है, राधा भक्ति है, राधा सबके है।

कहते हैं कि त्याग स्नेह से श्रेष्ठ है, त्याग स्नेह से श्रेष्ठ है, चरित्र सुंदरता से श्रेष्ठ है, मानवता संपत्ति से श्रेष्ठ है, परंतु संबंधों के बनाए रखने से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो एक सुंदर सा गीत और जो श्रीमती विमला जी हमारे लिए भेजे हैं, तो हम उसे सुनाने को कोशिश करूंगा।

तो मिला है, पता नहीं फिर कभी मिलेंगे या नहीं, पर इतिहास ये भी बताते हैं कि जिससे बराबरी नहीं हो पाती, लोग उसकी छवि खराब करने में जुट जाते हैं। शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ।

0: मेरी माँ मेरे लिए ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना है। मेरी माँ संसार रूपी सागर में मेरी सबसे मजबूत नौका है। मेरी माँ का दूध, उसका दिया भोजन और उसका मधुर स्पर्श मेरे सुख और स्वास्थ्य का आधार है। मेरी माँ का प्रेम प्रेम का शुद्धतम रूप है और इसका कोई विकल्प नहीं है। मेरी माँ। श्रोताओं, माँ का नाम ऐसा ही होता है जिसे सुनकर मन में एक प्यार बरसाने वाली, प्रेम लुटाने वाली ममतामय मूर्ति प्रकट हो जाती है। आज के इस घनघोर कलयुग में जब संतान माँ की महिमा को भूलती जा रही है, KMI म्यूजिक बैंक इस कैसेट के माध्यम से उन युवाओं को दिशा निर्देश देने का प्रयत्न कर रहे हैं जो अपनी माओं के चरणों से दूर हो चुके हैं। तो आइए बड़ी प्रेम श्रद्धा और लगन के साथ सुनते हैं भक्तिमय प्रस्तुति मेरी माँ।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 7 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे न संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। सुनने वालों, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह की गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूँ और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के आवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलेगास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुन लो वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेगास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सितु, बीबी साहिबा रहीमक्स जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेखास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनवलो, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए हैं कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी के कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जया किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों हैं, जैसे कि देन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवा धाम मंदिर जो देन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोगों के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी, चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

जय किशोरी जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।

हम सभी नियम से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों और गिरजाघरों में जाते हैं और ऊपर वाले का ध्यान लगाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है भक्तों, लेकिन क्या हम में से सभी अपने घर में बैठी हुई माँओं को

कुछ नहीं होता तो आइए मेरे साथ माँ की सूरत में भगवान की सूरत ढूंढने का प्रयत्न कीजिए।

0: वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए, आज जबकि त्योहार त्योहारों में वो त्योहार है कृष्ण जन्माष्टमी, तो उसी अंतर्गत हम सब अभी कार्यक्रम को ले जाएंगे। हमारे साथ सहयोग देने वाले स्टूडियो में उपस्थित शांता खेमई जी, बबली आसरा जी और हमारे साथ दो नौजवानों भी है, तो एंट्री लेते हैं शांता खेमई जी।
1: गोकुल में जिसने किया निवास, उसने गोपियों के संग रचा इतिहास। देवकी यशोदा जिनकी मैया, ऐसे ही हमारे कृष्ण कन्हैया। आपकी सेवा में सेविका शांता की भी हार्दिक से स्वागत है इस ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
2: आरजू यह नहीं कि सोना चांदी बंगला कार मिल जाए, शाम दीवाने हैं साहब, तमन्ना इतनी रखते हैं कि शाम सरकार मिल जाए। जय श्री कृष्ण।
1: हाँ, तो उपस्थित है स्टूडियो में, फाउन हिंदुस्तानी स्टूडियो में दो नवयुग है, वो अपना नाम भी बताएगा कि उन सबका नाम कैसे है, तो हम यहाँ चलते हैं।
3: प्रवर
4: विवान।
1: हाँ, तो ये दोनों बच्चे अपने एंट्री दे दी है और आगे में आप जरूर सुनेंगे कि ये भी कृष्ण भगवान के बारे में कुछ हमको भी इतला करेंगे और बताएंगे कि उनका क्या संबंध है भी कृष्ण भगवान से।
0: तो दोस्तों, जैसे कि आज के कार्यक्रम विषय रखा जा रहा है ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में कि कृष्ण जन्माष्टमी, आज हम सब उस ओर अभी विषय के ओर छलांग लगाने वाले हैं। क्यों ना हम पहले वही गीत चलाते हैं शांता जी, जो हर सप्ताह हम रखते हैं कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे।

बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी

0: सुनने वालों, हम सुंदर से और भजन जो सुने भगवान कृष्ण के, और हमारे साथ जो उपस्थित है स्टूडियो में, तो प्रवर जी हम सबको कुछ और सुनाने वाले हैं। प्रवर, वात खाए ऑन स्मेर फर्टेल ओवर कृष्ण भगवान।
1: Ik ga wat vertellen over het belang van Krishna. Al generaties lang is Krishna een raadsel voor sommigen, maar is God van miljoenen. Die gaan extatisch, zelfs als ze zijn naam horen. Mensen beschouwen Krishna hun leider, held, beschermer, filosoof, leraar en vriend. Alles in Krishna heeft invloed op de Indiase denken, leven en de cultuur op talloze manieren. Hij heeft niet alleen godsdienst en filosofie beïnvloed, maar ook in de mystiek en literatuur, schilder- en beeldhouwkunst, dans en muziek en alle aspecten van de Indiase folklore.
2: Prabhu, hartelijk dank voor het toelichten van over Krishna Bhagwan. Maar dan wil ik ook tegelijkertijd vragen aan
1: Vivaan.
2: Aan Vivaan, goed zo. Wat betekent jouw naam Vivaan?
1: Nou, letterlijk gezegd betekent Vivaan gewoon Krishna.
2: Ik denk dat je ook Krishna heet.
1: Ja, dat ook. Dus eigenlijk dubbel. Ik heet nu dubbel Krishna.
2: Dus je hebt dubbel energie.
0: To, Vivaan, dan ben ik toch benieuwd waarom je twee keer hetzelfde naam hebt. Vivaan en Krishna.
1: Nou, Vivaan was sowieso al gekozen door mijn ouders. En toen werd ik geboren op Krishna Janmashtami. Dus toen werd ik nog Krishna genoemd.
0: Wie was degene die jou de naam Krishna gaf dan?
1: Mijn nani.
0: En Prawar, wat mooi dat jullie er vandaag in de studio zijn, maar toch ben ik benieuwd. Kijk je wel eens naar Indiaanse Sri Krishna Bhagwanse series?
1: Ik heb alleen Mahabharat gezien.
0: Prawar, je hebt Mahabharat gezien. En wat weet je van de Mahabharat, Prawar?
1: Ik zal wat vertellen over de Mahabharat. Voor vele jaren leefde Krishna met de Pandava en Kaurava, koningen die heersten over Hastinapur. Als er een oorlog op het punt stond om uit te breken tussen de Pandava's en de Kauravas, werd Krishna gestuurd om te bemiddelen, maar dat mislukte. Oorlog werd onvermijdelijk en Krishna bood zijn troepen aan de Kauravas en heeft ingestemd met de Pandava's treden als de wagenmenner van de meester, krijger Arjuna. Deze epische strijd van de Kurukshetra, beschreven in de Mahabharat, werd uitgevochten in ongeveer 3000 voor Christus. In het midden van de oorlog, Krishna zijn beroemde advies dat de kern van de Bhagavad Gita vormen, waarin hij de theorie van Nishkam Karma of handeling zonder gehechtheid naar voren heeft gebracht.
0: Prawar, ik vind het heel mooi hoe je dat verteld hebt over de Pandavas en de Kauravas van de Mahabharat en over Bhagwan Krishna. Zo is het dat je, dosto, aise apne bachcho ke apne ghar se aur lekar ke mandiro aur tatha ghar se bhi ab mohlakhit ho gaye hai ki kafi aur jo dharmik films aadi banaya jata hai na Shanta ji, तो उसे जरूर अपने बच्चों को दिखाइए और उससे और बच्चों का भी ज्ञान बढ़ते रहेंगे। और ये तो न सिर्फ बच्चों के लिए है बबली जी, ये ऐसा है कि हम लोग देखने से तो हम सब का भी ज्ञान ऐसे बढ़ता है ना शांता जी,
2: सभी खाते।
0: आप माइक में बात करेंगे तो और बढ़िया रहेगा,
3: क्योंकि जो बातें हमें नहीं मालूम होती वो हमें सीरियल से पता चल जाती हैं और उससे और ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है सबको।
0: शांता जी, ये भी बात हो जाता है कि ऐसा तो हॉलैंड में तो सबके घरे सी टी वी आदि होता है ना, पर ऐसे भी होता था कि पहले जब सी टी वी आदि नहीं होते थे तो कितने देई भारत में बन चुके हैं और जिसे हम लेकर के अपने बच्चों को दिखा सकते हैं ना। पर आजकल समय हो गए हैं कि बच्चे मोबाइल लेकर बैठे हुए होते हैं और माए बाप भी अपना अपना मोबाइल लेकर बैठे होते हैं, तो ये सब बातें तो अब नहीं हो पाएगा। आपके इसके बारे में क्या ख्याल है?
2: ये सब बातें हो पाएगा, ये भी अपने अपने घर के और माँ बाप के उसका भी देखना है कि अगर वो सब कैसे चाहते कि बच्चों को शामिल करके साथ में बैठ के देखे, ताकि वो भी एक बार थोड़ा साइड में धर दे और साथ में मिलकर देखे। और इस बार और आजकल में भी तो जो पहले उतने महत्वपूर्ण था और आज में है कि बच्चों के लेवल पे भी सब बनते हैं फिल्म, तो बहुत अच्छे तरह से वो समझ जाते हैं।
3: जैसे कार्टून फिल्म भी बनती है, कार्टून सीरियल भी बनते हैं कि बच्चों को उससे ज्ञान मिले, बच्चे सीखें, शिक्षा लें कि कैसे।
0: जरूर बबली जी, ऐसे बन रहा है और सुंदर सुंदर कार्टून्स यानी कि फिल्म बनाए जाते हैं बच्चे को लिए। पर विवान हैप्पी आई क्या दैट नॉक स्टेट्स ऑफ हैप्पी आई टू ये क्लाइन वॉस वेल एस कार्टून्स फन कृष्ण भगवान एंड हसीन।
1: Ja, toen ik klein was op tv.
0: En kan je nog wat, of weet je nog wat daarover?
1: Als we erover praten wel, maar niet zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd.
0: Vrouwer, en jij zei dat jij Mahabharat wel eens hebt gezien, maar kijk je nog steeds met je zusje ook naar zo'n programma of zo'n filmpje van Krishna Bhagwan of Ganesh Bhagwan of Hanuman Swami? Want het zijn hele mooie cartoonfilms van.
1: Ja, ik kijk ze af en toe met mijn zusje.
0: En hoe oud is je zusje, broer?
1: Ze is laatst nog 6 geworden.
0: 6 jaar, en dan kijk je samen met haar wat cartoonfilms over Krishna Bhagwan of Ganesh Bhagwan, of welke kijk je het liefst?
1: Van Ganesh.
0: गणेश भगवान। तो दोस्तों और ये कार्यक्रम जो ज्योति का प्रकाश है, और यहाँ जो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, हमारे साथ दो युवा साथ बैठ करके और ये कार्यक्रम को स्टूडियो में और बनवा रहे हैं। और आशा ये रखता हूँ कि आज ये कार्यक्रम को सुन के और ज़रूर आप अपने बच्चों के साथ ये कुछ ना कुछ उसके बारे में संदेश जो हम सब यहाँ आपके लिए रखते हैं उसे जरूर प्रयोग करें, ताकि आपके बच्चे अपना आइडेंटिटी ना, अपना जो हमारे जो तीन चीज लेकर के हमारे भारत से 150 साल आए थे, वो अपना संस्कृति, अपना भाषा और अपना सभ्यता, ये आज तक जागृत है हमारे हिंदुत्व में। तो शांता जी, ये कार्यक्रम जो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, उसके अंतर्गत में आपके क्या और संदेश है? पहले हम क्यों ना पहले एक आपके शांता का पिटारा से एक कृष्ण भगवान के गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम में।
2: वही मैं भी कहना चाहती थी, क्योंकि अब आगे हम भी अच्छे अच्छे से कुछ बताएंगे या कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में।

गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, हे किधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की, ए

0: हाँ सुनने वालों, तो आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और ज्योति का प्रकाश जो यहाँ से आपके लिए नशर हो रहा है। कृष्ण भद्रपदा अगस्त सितंबर अन हिंद फेस वार बे ऑफ द सेवंथ एंड अगस्त दाग फान द डोंकर हेल्फ फान द मंथ भद्रपदा। Het geboorte van Krishna wordt herdacht. Een feest met veel muziek, toneel, zang en dans waarbij de verjaardag van Krishna wordt gevierd. Krishna wordt gezien als de volledige incarnatie van de god Vishnu. Hij werd onder erbarmelijke omstandigheden geboren toen zijn ouders gevangen zaten. Het voorlezen uit het Bhagavad Gita, een leerdicht van Sri Krishna, staat die dag centraal in het verschillende tempels en bijeenkomsten. Met Ram is Krishna de meest vereerde incarnatie van Vishnu. Krishna is de onderrichter. De Bhagavad Gita, het lied des Heren, en de Bhagavad Puran zijn aan hem gewijd. De Bhagavad Gita is een onderdeel van het grootste epos aller tijden en aller volkoren, namelijk de Mahabharat, die uit ruim 100.000 sloks, twee regelige Sanskriet hierofenen bestaat. Op Krishna Janmashtami worden vooral in de tempels diensten gehouden waarbij over het algemeen uit het Bhagavad Puran verhalen uit het leven van de leer van Krishna wordt voorgelezen. तो ये छोटा रूप में हमने आपको बता दे डच भाषा में कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में।
1: सुनने वालों, जैसे कि आपने सुने शांता जी जो नीदरलैंड्स में हम सबको संदेश सुनाए, और नीदरलैंड्स में तो आज के कार्यक्रम जो खास करके कृष्ण भगवान के, और ज़्यादा तादाद में बच्चों जो अपने घर से भी कृष्ण भगवान के फिल्म देखते हैं, कृष्ण भगवान के जो कृष्ण जन्माष्टमी जो उस अंतर्गत में मंदिरों में जाते हैं, तो हमारे विवान और प्रवर अभी कुछ और सुनाने वाले हैं। पर बबली जी, आप भी कुछ तैयारियां करके लेकर स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं, तो हमें जरूर कृष्ण जन्माष्टमी के अंतर्गत में और थोड़ा से हिंदी में हम सबको अपना संदेश और रखे।
2: हाँ जी, जरूर। कृष्ण जन्माष्टमी

0: पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पापों के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार कर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम के साथ विदा कर रहा है उसका आठवां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भर कर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा, ना देवकी रहेगी ना उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की आठवीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी आठवीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारी समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि आठवां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के सात बालकों को निर्दयी पूर्वक मार डाला। भद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पदधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव श्री कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना को पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गईं। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर कर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। श्री कृष्ण की पुण्य जन्मतिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण।
1: ये पूरा वृतांत जो कृष्ण जन्माष्टमी जब से शुरू हुआ और जा करके और बबली जी हम सबको जो निकाल करके और रखे हम सब के लिए। तो हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में हम आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने सुने और शांता जी और बबली जी भी कुछ सुनाने वाले हैं, तो बबली जी ये बताइए कि भारत में कैसे आप मनाते थे कृष्ण जन्माष्टमी?
1: जब हम छोटे थे, अरे छोटे नहीं थे, जब बड़े भी थे तो बड़ी धूमधाम से मनाते थे। सुबह उठते थे तो कहते थे व्रत रखना है, तो व्रत रखते थे, नहाते धोते थे, व्रत रखते थे, मंदिर जाते थे तो मंदिर सजे होते थे, और देखना हमने झांकियाँ भी सजी होती थी अलग अलग पोशाकों में, कोई कृष्ण बना है, कोई राधा जी बना है, कोई बलराम जी बने हैं, रंगोली बनाते थे लोग, रंगोली भी बनाते थे।
0: और ये बात हो जाता कि वहाँ पर, जैसे कि मैंने एक बार भी कृष्ण जन्माष्टमी पे वहाँ थे तो, और 56 प्रकार के भोग उसमें भी लोग ज़्यादा और ध्यान देते थे ना?
1: 56 प्रकार के भोग, हाँ जी, लेकिन वो तो घरों में लोग नहीं बनाते, कहीं कहीं भंडारा होता है, भंडारे में बनाते हैं।
0: शांता जी, तो आपने तो कंडाल में भी कृष्ण जन्माष्टमी बनाए होंगे ना?
2: कंडाल में भी बनते थे, हाँ, मंदिरों में भी, और ऐसे भी कई कई जो मंदिर नहीं जाते तो अपने घर में भी बनाते हैं। वो जन्माष्टमी परिवार जो है फरियाद अखवान कृष्ण भगवान। और ऐसे हुआ कि मैं एक बार भारत में थी, अरे भारत तो कई बार गई, मैं से इसी उपलक्ष में वहाँ पे भी मौजूद थी, तो जैसे अपतोख रहे ना, तो वहाँ पे भी ऐसे ही इतना शानदार आँख में रंग बिरंग राधा कृष्ण और सभी अन्य भगवान के स्वरूप बना कर, ऐसे गाड़ी में ट्रैक्टर पे बना कर सजाए धगाए के, और लंबा लंबा ऐसे किलोमीटर के हिसाब से वो अब तो वो चला बनाते थे और चलाते थे, तो हम किनारे सड़क के किनारे खड़ा होकर उसके लुफ्त उठाते हैं, बहुत आनंद आता है।
0: तो पर ये तो आपने कह दिया भारत में ऐसे अपतोख कहा जाता ना,
2: ये
0: पर कौन शहर में आप वो देखे?
2: करोड़बाग में, करोड़बाग में हम ठहरे थे, तो हम ऐसे बाहर घूमने गए थे घूमने के लिए, तो अकस्मात में तो बहुत शोर की तरह ऐसे सब गाना बजाने की तरह, बस आप तो जानते हैं अपतोख में कितने कितने शोर रहे और कितने अच्छा लगता है देखने के लिए, तो हम रुक गए, तो इसने हम आनंद उठाने लगे। मेरे ख्याल से आधा घंटा 3/4 लंग आनंद ले रहे थे,
0: इतना लंबा का अपतोख। तो बबली जी, इस पे आप भी कुछ कहना चाहते हो?
1: हाँ जी, मेरे को अभी ध्यान आया, वैसे तो पूरे भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन खासकर मथुरा ब्रज में, क्योंकि मथुरा में कृष्ण जी ने जन्म लिया है, वहाँ पर तो और धूमधाम से मनाई जाती है। वहाँ पर तो खाली एक दिन की कृष्ण जन्माष्टमी नहीं है, वहाँ पर तो हफ्ता पहले शुरू हो जाती है।
0: तो हफ्ता पहले शुरू हो जाता है। अभी हम यहाँ भी कृष्ण जन्माष्टमी आज हम लोग खूब धूमधाम से मना रहे हैं, पर ये बताइए कि कृष्ण जन्माष्टमी के कौन सा प्रसाद सबसे और ज़्यादा उस दिन चढ़ाया जाता है?
1: मोहन भोग, क्योंकि मोहन कृष्ण जी को कहते हैं, तो इसीलिए मोहन भोग चढ़ता है। और वैसे कृष्ण जी का पीले लड्डू भी हैं, लड्डू चढ़ाए जाते हैं, बेसन के लड्डू।
0: तो बबली जी, भारत में जैसे कि आपने कहा कि मथुरा और जा करके वहाँ, मथुरा और कहाँ कहे थे आपने?
1: ब्रज
0: भूमि से, और वहाँ पर वो एक तीर्थ स्थान है ना?
1: और मथुरा में तो मथुरा के पेड़े उसका प्रसाद होता है, क्योंकि कृष्ण जी को वही भोग लगता है। मथुरा के पेड़े इतने पूरे भारत से लोग बाहर भी भेजते हैं, इतने मशहूर हैं।

0: तो जैसे कि आपने कहा कि मथुरा के पेड़े,
1: बबली जी ने अभी कहा पेड़े और मोहन भोग, तो अगर हम ये सुने और समझे ये अपने दिमाग जो भिड़ा रहे, तो मोहन भोग जैसे हम यह बनाते हैं जो हम कहते हैं कि मोहन भोग वो पिसान के या सूजी के, तो सिर्फ वो नहीं है, मोहन भोग यानी कि अगर जैसे बबली ने कहा पेड़े तो उसको जो भोग लगाए तो वो भी मोहन भोग हो जाए, यानी कि मोहन को भोग लगाना। तो ये नहीं है कि सिर्फ जैसे हम यह बनाते हैं सूजी को और पिसान के उसको सिर्फ, नहीं, यानी कि जो भी आपको दिल चाहे जो भी आपके घर में है उपलब्ध उसको भी मोहन के भोग लगा दे तो वो भी मोहन भोग हो जाएगा।
2: बिल्कुल सही कहा शांता जी आपने, मेरे कहने का बिल्कुल मतलब यही है कि जरूरी नहीं कि एक खाली प्रसाद ही होता है, हर चीज़ का प्रसाद हो सकता है, फल का भी हो सकता है
3: जी।
2: और पेड़े भी हो सकते हैं और प्रसाद भी हो सकता है। तो मोहन को भोग लगाना
3: कि भोग लगाना भगवान के भोग लगाना,
2: हाँ जी,
3: तो मोहन मोहन उसको भोग,
2: हाँ जी। और भोजन का भोग भी हो सकता है शांता जी,
3: जी।
2: और भोजन में 56 प्रकार के खाने होते हैं तो उसका भोग लगाते हैं,
1: तो मोहन के भोग। अभी आपने जो बोले ना कि पेड़े, तो इस पर मेरी को ध्यान आ गए कि नहीं जैसे हम कहते हैं कि यही मोहन भोग है, नहीं बल्कि मोहन के भोग लगाना वो मोहन भोग है।
0: शांता जी जैसे कि आपने कहे कि मोहन को भोग लगाना, क्यों ना हम एक सुंदर सा भजन की ओर चलते हैं फिर कार्यक्रम में आगे, क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी, तो आज हमारा जो विषय यही है तो हम कार्यक्रम में आगे जुड़ जाएंगे। पहले हम एक सुंदर से गीत की ओर चलते हैं फिर आपके साथ अभी साथ जुड़ जाएंगे।

0: तो सुनने वालों, जैसे कि अभी आप सुंदर सा गीत को और सुने, तो हमें भी दिल है कि कुछ कहने के श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अंतर्गत में लोस्तरास जो आज का कार्यक्रम है द तेई मफंदाख इस कृष्ण जन्माष्टमी भगवान नारायण सत अनकेर नात देंकन। शांता जी, भगवान नारायण जी एक बार बैठ के सोच रहे थे ना बबली जी, तो माता लक्ष्मी सख दत्त एंड लेक अस ऑफ नारायण जी मूवास एंड लेक ऑफ है स्लाप रखवास। तुन फ्रूख माता लक्ष्मी वद रेदन वास। उन्होंने ये प्रश्न किया कि क्यों आप ऐसे लग रहे हैं जैसे कि आपको नींद आ रहा है, और ऐसा ये प्रश्न लक्ष्मी माता ने नारायण जी से किए ना
1: ये।
0: तो भगवान नारायण ने कहा दत है नीत मुवास ऑफ तवेल, जो जैसे लग रहा था दत है नीत स्लापरख इस है सित त देंकन ओवर द गीता कैनस ना
1: गीता
0: का ज्ञान दार फ्रूख माता लक्ष्मी ऑफ इस एर इमांस लेफन ओइत फरांदर्त मैं द गीता कैनस। जो माता लक्ष्मी ये प्रश्न रखे कि किसी के जीवन में कुछ प्रकार से परिवर्तन आया है गीता का ज्ञान से, तो भगवान नारायण ने इस बात को चर्चा किया ओइत द गीता होवस्तुक आख्तीन इन द डिटेल्स हेफ्ट है दत उइटगेलेग आन माता लक्ष्मी। द 18th hoofdstuk is de Mahatmya, oftewel Bhagwan Sri Narayan ji vertelt aan Mata Lakshmi dat van de Gita, van al die hoofdstukken, net als van alle nadis, jitna nadi hai na, pavitra nadiyo, sabse sarvasres Ganga hai, van alle jo humme gau mata kehte na, सर्वश्रेष्ठ कामधेनु है, और जैसे कि सभी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ नारद जी है, इसी प्रकार से और गीता का होवस्तक अख्तिन द बेस्ट अल्स ये देश होवस्तक रेसिटेर दन वर्ड वर्ड फर्टेल्ट ये फलोस फन अले क्वादन दी ये खदान साल है बन। ये एक ऐसा संदेश है जो कहा जाता है और इन सेकर तैत सात इंद्र ऑफ द बेरख सुमेरु सामन मैत सती जी मैत द बेस्ट वेल इन अन बै एन सैन फन अंद्र देवता। तो और देवता के साथ इंद्र जी और जाकर के सुमेरु पर्वत पर और बैठे हुए और देवताओं के साथ तुन साख इंद्र अनडिसिपल फन भगवान नारायण एक दूत जो भगवान नारायण के अनसीलदार ब्रैगन अनहेफ्त हेत सील द प्लास फन देव इंद्र गगेवन। जो आत्मा रहा ना उसे वो स्थान पे बैठाए जहाँ इंद्र देव बैठते थे। इंद्र फोन दत नीत लोग एन इस बै नारायण खान मैद फ्राह फन वार ओम दित। इंद्र फ्रूखान भगवान ना तो ये कोई यज्ञ किया है, यज्ञ इस सेरेमोनियल रिट्यूअल तो ना तो कोई यज्ञ किया है, ना तो कोई तीरथ किया है, है हिव नोइत द हेल्ख प्लाट्सन बसोख्त ना कोई व्रत किया है। जैसे कि अभी बबली जी भी कह रहे थे व्रत कहा जाता है फास्टक है ना
1: जी,
0: और ना ही कोई प्रकार के दान किया है, ना द हेव नोइत तनिमर अन गिफ्ट गगेवन एन ओक गेन मंदिर स्लात माकन है। वो कभी ना ही कोई मंदिर बनवाए, ना शिवालय बनवाए, नोइत अन शिव मंदिर है फ्लातन माकन एन ओक गेन कुआ, कुआ कहते पुत वाटर पुत ना वाटर पुत लातन ख्राफन, और ना ही कोई तालाब बनवाए है, ना नोइत अन ख्रख्त लात माकन ऑफ तवेल ख्राफन। दुस अले खुए कि ना कि कभी वो अच्छाई का काम किया है, हु कान है द प्लाट्स फन इंद्र क्राइख। तभी श्री नारायण ने कहा दत है दित क्राइख ओम दत है सैन हेल लेफन द 18th देल फन द गीता हेव गरेसिटेर। श्री नारायण ने और लक्ष्मी से कहा कि कलयुग में इन द तैतपरक वार वे न्यू लेफन सल गंगा द हैलिगे रिवीर गीता एन द गायत्री द हैलिगे टेक्स्ट uit de वेदास alle drie मुक्तिस बफ्रेड verlossen के दाता रहेंगे। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम सब एक और गीत के ओर बढ़ेंगे और फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे।

अष्टमी के बहुत बहुत बधाई। कान्हा हम सब के घर प्रेम के साथ साथ खुशियों की सौगात लाए। हम सब फले फूले और खूब तरक्की करें। आप सभी को हार्दिक से शुभकामनाएं अभी से पेश किया जाता है आपकी सेविका।

श्याम भक्ति का नशा सारी उम्र न उतरे, श्याम की भक्ति में सारी जिंदगी गुजरे, दीवाने दिल की तड़प कुछ तो काम आए, मेरे लब जब भी खुलें सिर्फ श्याम का नाम आए। जय श्री कृष्ण, सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो।

0: कसम।
1: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ दो युवा जो सहयोग दिए, प्रवर और विवान, बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। और हमारा साथी शांता खेमाई और बबली आसरा जी जो हमारे साथ दिए कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका सेवक संजय और यही आशा रखता हूँ कि कुछ ना कुछ संदेश जरूर आप तक पहुँचा होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ कृष्ण जन्माष्टमी। नमस्कार।

हम यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए यकीन कीजिए, हम यार है तुम्हारा की यकीन नहीं है तो आप तार करके अभी बातचीत कर सकते हैं यकीन के साथ दोस्तों।

यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए, यकीन के साथ मैं भी कहता हूँ कि हम यार है तुम्हारे। याद आ रहा है, तेरी याद आ रहा है दोस्तों, उन दिनों के बाद है जब बप्पी लहड़ी ने कदम रखा था सॉन्ग वर्ल्ड में, तो मिथुन का फिल्म था डिस्को डांसर, इसी फिल्म का सॉन्ग है। और बात यह है कि उन दिनों में के बात है जब किशोर कुमार एक टॉप पे था दोस्तों, हर एक फिल्म में उसका गीत होता था, लेकिन किशोर कुमार मिथुन के लिए गीत नहीं गाना चाहता था। जो जो फिल्म में मिथुन काम करते थे उसमें किशोर कुमार कभी गाना नहीं गाना चाहते थे। बात यह था कि किशोर कुमार का औरत दोस्तों को बीबी जो गीता बली जो थी, उन्हें मिथुन हम खोल के हिंदुस्तानी बोलेला, यहाँ देखिए उसे फंसे है, ओके मिथुन भगा ले गया रहा। तो इसी कारण ना मिथुन के हर एक फिल्म जब निकलता था तो किशोर कुमार इनकार कर देते थे, उसका फिल्म में गाना नहीं पेश करते थे। फिर भी पपीदा, जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहड़ी के नाम से हम ज़्यादा अभी उन्हें पुकारते थे, उन्हीं का सॉन्ग है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

याद आ रहा है पपीरा बप्पी लहरी दोस्तों। पप्पी लहरी भी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया और पप्पी लहरी जितेंद्रा का 12 हिट फिल्मों में भी गीत को पेश किया। सभी फिल्म से एक फिल्म था फिल्म हिम्मत वाला, हम सब मिलकर सुनेंगे। नैनो में सपना, किशोरदा, लता मंगेशकर और बप्पी, सभी के आवाज़ में आप सॉन्ग सुनेंगे।

संजना पे दिल आ गया फिल्म हिम्मत वाला। अभी जो सॉन्ग भी आपने सुना वो किशोर और लता का गीत था, लेकिन बप्पी लहरी इस फिल्म में भी प्लेबैक किया है। बप्पी लहरी जी हाँ दोस्तों, बप्पी लहरी को नहीं 67 तक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम आया, इसलिए कि एक साल के अंदर मेरदान होने तक फिल्म जी हाँ दोस्तों 180 से ज़्यादा गाना एक पेश किया है एक साल के अंडर में। मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के आवाज़ में एक सॉन्ग और हम सब मिलकर सुनेंगे।

इतना कमजोर मत बनो, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

मेरे नसीब में कोई नहीं। ये गीत दोस्तों जो मैं पेश करता हूँ, आप ये फिल्म जरूर देखे होंगे, हेमा मालिनी का फिल्म है और उन दिनों में टॉप एक टॉप एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी। आप जानते हैं हेमा मालिनी का शादी नहीं हुआ लेकिन धर्मेंद्र से उनका शादी हुआ है।

Ja, Pika, heb je station far hon hun stange radio aap sun rahe program Geeto ka Sangam Rajan ke saath. Duniya mein logon ko dhoka kabhi ho jata hai. Main sochta hu duniya mein har ek insaan ko dhoka jo ek baar hoga. Ji haan dosto, har ek insaan dhoka duniya mein jo ek baar khaya hoga. तो अर्जुन बर्मन का सॉन्ग है. राजेश खन्ना मुमताज फिल्म में काम किया और आप जानते हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना. उन दिनों में एक राजेश खन्ना के अलावा एक दूसरा स्टार नहीं था जो इतना भीड़ भड़क्का से यहाँ पर फिल्म पेश करते थे. अब मुमताज जो कदम रखा फिल्मी दुनिया में तद्दारा सिंह के साथ वो काम करते थे, तो उसके बाद ये भी आगे बढ़ना चाहता, लेकिन बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स इन्हें नहीं लेना चाहता था. सोचा था ये दारा सिंह के साथ फिल्म बनाते हैं, एक दूसरा अलहदा तरह के फिल्म है. फिर भी जब ये कदम रखा दोस्तों मुमताज, तो उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते चला गया एक टॉप एक्टिंग से भी थी उन दिनों में. राजेश खन्ना एंड मुमताज का फिल्म दुनिया का सॉन्ग है. दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता था.

0: वही देता वही लेता उसी का है संसार, एक आता एक जाता ये जग का है व्यवहार।
1: मिट्टी ओढ़न में
0: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मृत्यु समाचार पुकारा जा रहा है। ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए परिवार के दो मृत्यु समाचार है कार्यक्रम में।
1: मिट्टी का तिरहाना
0: Den Haag, Tegelen, Limburg, Leiderdorp, Oost-Zeelandse, परिवार गंगा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 14 अगस्त को शाम 5:30 बजे यानी 7:15 पर 85 साल के आयु में इंदलीफ तहत फन 85 यार दो सार चंद्रसेन गंगा और नंद कुमार गंगा का बहनोई, कारला गिरधारी का नंदोई, निर्मला गीता प्रवीण और रेखा का फुफ्फा, 17 लड़कों का नाना परनाना और फुफुआ ससुर और ननुआ ससुर, लिम्बेरुख तेखलन से सुरेन सुनीता धुरेन मनोज जयदेव आनंद का मौसा, 30 लड़कन यानी तीर्थ केंद्रन, आजा पर आजा नाना पर नाना मौसवा ससुर अजवा ससुर और ननवा ससुर, बड़की सविता गंगा की छोटकू, लिम्बेरुख से बहन हम लोगों की बहन आनी इंद्रावती सरज मिश्र गंगा के पति, बेटा स्वर्गीय हैंक जयराज का पिता, सेलंत ओ सुबेर के रहने वाला श्रीमान पुण्य आत्मा कोंदराज सिंबुदत्त सरजू मिश्र का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूरीनाम में वेल्खलेखन के निवासी था और वेल्खलेखन स्कूल का लेरार था। ऐतफात यानी कि शव का दर्शन आप कर सकते हैं है सेवस लंत में ननसन बान कंत व्यक्तवेई खुश में। हम दोहराते हैं है सेवस लंत ननसन बान कंत व्यक्तवेई खुश में। अर्थी को आप देख सकते हैं 18 अगस्त को 5 बजे से 5:45 बजे तक 7:15 तत्कवर्थ फोर्सेस और अगले दिन 9:15 को हल्फ सेफ से क्वर्थ ओफर सेफ तक हम दोहरा रहे हैं। देखने का अवसर है 8 अगस्त 7:15 तक 7:45 यानी 5 से क्वर्थ फोर सेस तक और वोन्सदाग 9:15 को हल्फ सेफ से क्वर्थ ओफर सेफ तक। आने वाला दोंदरदाग 20 अगस्त 2:00 नानसन बान कंत व्यक्तवेई के क्रेमेटोरियम में दाह क्रिया किया जाएगा खुश में। जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 06-22-42-31।
1: मैं मिल जाना एक दिन में
0: खबर को हम दोहरा रहे हैं। Den Haag, Tegelen, Limburg, Leiderdorp, Zeeland से समस्त परिवार गंगा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि दो सार चंद्रसेन गंगा और नंद कुमार गंगा का बहनोई, कारला गिरधारी का नंदोई, निर्मला गीता प्रवीण और रेखा का फुफ्फा, 17 लड़कों का नाना पर नाना और फुफा ससुर और ननवा ससुर, लिम्बेरुख तेखलन से सुरेन सुनीता धुरेन मनोज जयदेव आनंद का मौसा, 30 लड़कों का आजा पर आजा नाना पर नाना मौसवा ससुर अजवा ससुर और ननवा ससुर, बड़की सविता गंगा के छुटकू, आनी इंद्रावती सरजू मिश्र गंगा के पति, बेटा स्वर्गीय हैंक जयराज का पिता सेईलांत के निवासी और सुबेरो के निवासी श्रीमान पुण्य आत्मा कोनराड सिम्बू दत्त का स्वर्गवास हो गया है 85 साल की उम्र में बीते हुए शुक्रवार 14 अगस्त 2005 को, जिन्हें आप ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और वेल्खलीखन में सूरीनाम में उनका निवासी था वहाँ का और वहाँ का स्कूल का लेरार भी था। शव को आप देख सकते हैं हेत सेव सलंत ननसन बान कंत वेख्तवेई खुश में दिनसदाह 18 अगस्त के 17:15 to 6:15 और वूंसदाह 19 अगस्त को 7:30 to 7:15 तक। डाकरिया आने वाला दोंदरदाह 20 अगस्त को 14:00 यानी शाम 2 बजे ननसन बान कंत वेख्तवेई खुश सेईलांत में। जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 0622 42 31।

0: दूसरा मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए।
1: सेलांत हुस ओ सुबेरख से परिवार सरजुमिसर, परिवार सरजुमिसर बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 14 अगस्त को क्वार्ट ओवर फाइव शाम को 85 साल की उम्र में यानी इंदलीफ सईद फन फैफ तख्त यार दो बेटियां शकुंतला और शर्मिला सरजुमिसर के पिता, दो दामाद राज या राजन रौफ कुंदन पांडेय और हेमंत रघुनाथ का ससुर, चार बेटा शोर्स बोइक अर्नोल्ड रामोन रोमेयो सरजुमिसर का पिता, 20 नाती नातिन पोता पोतिन पर नाती पर नातिन नदमाद और नतपतो के आजा पर आजा नाना पर नाना अजवा ससुर और ननवा ससुर, तीन बहुएँ यानी सोन दोख्तर्स गीता श्यामलाल उषा तुलसी अरुणा अयोध्या का ससुर, पत्नी इंद्रावती सरजुमिसर का पति, स्वर्गीय बेटा हैंक जयराज का पिता, सेलंत ओ सुबुर के रहने वाला श्रीमान पुनिया आत्मा कोनराज सिंबुदत्त सरजुमिसर का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूर्यनाम वेलखलेखन के निवासी था और वहाँ वेलखलेखन का स्कूल का लेरार था। शव के दर्शन आप कर सकते हैं एथफार्ट सेंट्रम हेट सेव सलोंद ननसन बान कंत वी खुश में दिन दख 18 अगस्त को 17 से क्वार्थ ओवर 6 तक और 19 अगस्त को हाल्फ सेफ से क्वार्थ ओवर सेफ तक। डाक्रिया दोंदर दख 20 अगस्त 13 को शाम 2 बजे वही एड्रेस पर ननसन बान कंत वक्त खुश सेलांत में। खबर को हम दोहरा रहे हैं, सेलांत खुश ओ सुबर से समस्त परिवार सरजुमिसर कुंदन पांडेय रघुनाथ श्यामलाल और तुलसी बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि फ्राइडे 13 अगस्त को क्वार्ट ओवर फाइव शाम को 85 साल की उम्र में इन द लीफ तेज फन फेफन तख्त यार दो बेटियां शकुंतला शर्मिला के पिता, दो दामाद राजन या राज रौप कुंदन पांडेय और हेमंत रघुनाथ का ससुर, चार बेटे शोर्स या बॉय के भी कह सकते हैं अर्नोल्ड रामोन रोमेयो सरजुमिसर का पिता, 20 नाती नातिन पोता पोतिन पर नाती पर नातिन नदमाद और नदपतो का आजा पर आजा नाना पर नाना अजवा ससुर और ननवा ससुर, गीता श्यामलाल उषा तुलसी अरुणा अयोध्या का ससुर, पत्नी इंद्रावती सरजुमिसर का पति, स्वर्गीय बेटा हैंक जयराज का पिता, सेलांत ओ सुबुर के रहने वाला श्रीमान पुण्य आत्मा कोनराज सिंबुदत्त सरजुमिसर का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूर्यनाम में वेलखलेखन के निवासी था और साथ ही साथ वहाँ वेलखलेखन का स्कूल का लेरार। शव का दर्शन आप कर सकते हैं एथफार्ट सेंट्रम हेट सेव सलंत ननसन बान कंत वक्त वे खुश में दिन दख 18 अगस्त को 17 तौर क्वार्ट फोर सेस और वंस दख को 19 अगस्त को हल्फ सेफ से क्वार्ट ओवर सेफ तक। डाकरिया दोंदर दख 20 अगस्त शाम 2 बजे ननसन बान कंत वक्त वे खुश सेलंत में डाकरिया किया जाएगा। बैठक घर पर नहीं है और जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 0620 42 12 41.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, सभी परिवार सरजू मिसिर, सभी परिवार रघुनाथ, कुंदन पांडे, तुलसी, श्यामलाल, सरजू मिसिर और गंगा को शोक संवेदना प्रकट कर रहा है। सहन शक्ति के लिए प्रार्थना किया जा रहा है।

द्वारा पानुनिस्तानी राज्यों सभी परिवार को सुख समृद्धि प्रदान कर रहा है। फिर दीर्घ से ली दिया हम सभी सावन मिट्टी सुनने वालों से निवेदन है कि ये खबर को और आगे तक पहुंचा देने को। यहाँ तक था ये मृत्यु समाचार। आइंदा

आप ही का हैप्पी स्टेशन 5 हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है, कांटेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 7 5 2 8 4 0 या 9 7 3 7 2 0 0 पर आप तार कीजिए। तारकरण में मैं दोहराता हूँ, अपन अखेंडा में लिख कर रख लीजिए आज नहीं तो कल के लिए 0 7 5 2 8 4 0 या 0 7 3 7 2 0 0 तारकरण नंबर है। शान दोस्तों, शान एक गायक है लेकिन शान को एक बैंड का एक ग्रुप भी है, एक म्यूजिक ग्रुप है दोस्तों, और उसी म्यूजिक ग्रुप के आवाज़ में आप म्यूजिक सुनेंगे और शान के गला से आप ये गीत को सुनेंगे।

शान, मिस्टर शान की मीठी आवाज़ में अभी आपने सॉन्ग को सुना। फाउन हिंसानी तो आप चुन है दोस्तों उदित नारायण। उदित नारायण आपको फरमाएंगे कि हवाओं ने ये कहा, और जैसे आप सभी को मालूम है कि हवा भी आवाज़ देता है दोस्तों, लेकिन कहता है हवा तो मुझे मालूम नहीं है। आशा रखता हूँ कि आपको ये गीत सुनकर पता लग जाएगा कि हवा कहता है और हवा ने क्या कहा आपको खुद मालूम हो जाएगा। आप खुद सुनिए दिल और जान से।

उदित नारायण पद्मश्री। उदित नारायण के मीठे आवाज में भी आप ये गीत को सुना। दोस्तों, जानू मेरी जान, तू मेरा मैं तेरे, या तू मेरी मैं तेरा, जाने सारा होलांत। दोस्तों, ये फिल्म शान का सॉन्ग है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन काम किया है परवीन बाबी के साथ। आप सभी को मालूम है कि दोनों में प्यार मोहब्बत था, फिर भी परवीन बाबी जो है वो डिप्रेसिव हो गया था, और जब डिप्रेसिव हुआ तब कई लोग के बारे में अनबन कहा, और कहा कि भारत की सरकार जो है उन्हें भी फॉर द रेक्टर एडाक्ट किया था, उसका मूड खराब हो गया था। सो लेकिन उसी समय पे एक पार्टी पे परवीन बाबी ने गया और अमिताभ बच्चन उसी समय पर सुपरस्टार चुना गया। तो परवीन बाबी से सवाल किया गया कि आप क्या ये बात से सही है कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार चुना गया? तो परवीन बाबी ने कहा, अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार नहीं है, सुपरस्टार का पद अगर देना है तो धर्मेंद्र को दीजिए, देवानंद को दीजिए, ऋषि कपूर वगैरह का नाम लिया तो उसके तीख न अमदद प्यार मोहब्बत अब नहीं था और डिप्रेसिव हो गया था। ठीक से देखा जाए तो उसको आप भी नाराजी नहीं मान सकते, इस बात पर कोलक नहीं ले सकते हैं, वो नहीं जानते थे वो क्या कहते। फिर भी जो इसके दिल में आया वो कहा, जानू मेरी जान। ये दोनों लॉफर्स दोस्तों, परवीन बाबी और साथ ही साथ अमिताभ, दोनों का फिल्म शान का सॉन्ग।

प्रेमी अमिताभ बच्चन परवीन बाबी का फिल्म शान का सॉन्ग अभी आपने प्रोग्राम में सुना। उदित नारायण एक बार फिर प्रोग्राम में, लेकिन उदित नारायण के साथ रहेगा विनोद राठौर और साथ ही साथ अलका याग्निक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक पर। और ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा है। दोस्तों आप जानते हैं एक गीत जब तैयार होता है तो गीत का लिखार कोई होता है, जो लिखता है गीत को स्क्राइफर, वो भी एक कलाकार है, लेकिन लोग उसका नाम नहीं लेते हैं। जब एक गीत नहीं लिखा जाता तो उदित नारायण अलका वगैरह वगैरह लोग गीत कैसे गाते, तो एक स्क्राइफर का तालीफ भी किया जाहिर किए करने को, इसलिए कि एक स्क्राइफर जो है वो बैठ कर दिन रात सोचते हैं क्या लिखूँ और जाकर गीत बनाते हैं। और एक गायक गीत को गा लेता है, बढ़िया आवाज़ है तो गा लेता है। फिर भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है तेरे बिना दिल।

मेरे बिन दिल लगता नहीं मेरी जान, वाह वाह क्या बात है दोस्तों। अगर दिल लगाना है तो एक जगह पर दिल लगा लीजिए, दो जगह दिल लगाएंगे तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। आदमी है जो चार जगह दिल लगाता है वो भी होता है, हो सकता है भी। दोस्तों राजकुमार, राजकुमार एक एक्टर था, जब वो कुछ कहते थे तो लोग ध्यान से सुनते थे कि अब क्या बोली। तो फिल्म मॉडल इंडिया जब बना बहुत पॉपुलर हो गया राजकुमार, उसके बाद चारों बगल से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट आने लगा। तो एक रात एक शाम के बात है, जब वो अपने दोस्त प्रकाश अरोरा और उनके पत्नी के साथ इवनिंग ड्राइव पर निकले थे। इस दौरान वो एक पाम स्टोर पे रुके, उसी समय वहाँ कुछ लोग आए, और जब वहाँ पर लोग आए तो राजकुमार को परेशान करने लगे। कुछ देर तो राजकुमार बर्दाश्त करते करते रह गए, फिर भी जब बात उन्हें सहन शक्ति से भर गए तो उन्हीं ने बात या पलट कर जवाब देने लगा। आप जानते हैं राजकुमार का मुंह जो है वैसे सबसे मोच कफाला, तो वो जवाब देने लगा, फिर लड़ाई हुई। लड़ाई का शुरुआत हो गया दोस्तों, और एक शख्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दुख के बात है दोस्तों, लड़ाई के समय और किसी ने नहीं देखा कि वो शख्स जो मर गया उन्हें किसी ने मारा, राजकुमार ने मारा या उसके दोस्तों ने, लेकिन वो शख्स दुनिया को छोड़ चले गए। और एक साल तक मामला चलता रहा, राजकुमार का प्रॉब्लम था एक साल तक और काम नहीं कर सकता था। फिर भी ये बात जज के सामने पेश किया गया और राजकुमार को फ्री हो गया। राजकुमार को कहा गया कि आपने काम नहीं किया, फ्री हो गया। मैं नहीं जानता राजकुमार किया या नहीं किया, फर्दाख्त था। और आप जानते हैं फिर भी उन दिनों के बात है या इन दिनों के बात है, जब लोग पॉपुलर होते थे तो उन्हें बहुत कम सज़ा भी मिलते थे। तो उसके बाद राजकुमार को यहाँ से फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के शुरुआत हो गया। आप जानते हैं 3 जुलाई 1996 तक के बात है, जब राजकुमार का मृत्यु हो गया था मुंबई में। तो फिल्म हमराज का सॉन्ग है, राजकुमार और सिमी दोनों के आवाज दोनों फिल्म में काम किया, और ये गीत महेंद्र कपूर, पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में

गगन के तले धरती पर पाँव पड़े राजकुमार के बारे में मैंने कहा भी दोस्तों, और अब की बार एक सॉन्ग मैं तैयार करके रखा हूँ, फिल्म चलते चलते का सॉन्ग है अभिजीत एंड अलका दोनों के मीठे आवाज़ में आप सुनेंगे शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी का फिल्म चलते चलते का सॉन्ग।

तौबा ये नसारे, तौबा नसार के बाद लाखों है यहाँ दिलवाले, फिर प्यार नहीं मिलता। कैसा बात है दोस्तों, लाखों है दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता। हाथ में फूल ले लो, देखो कैसे प्यार मिल जाएगा। फिल्म किस्मत का शौक है, विश्वजीत बबीता फिल्म में काम किया दोस्तों। विश्वजीत, विश्वजीत एक न सिर्फ एक एक्टर था, लेकिन अभी तो जीवित है। मैंने कहा उनका एक्ट के समय पर, उन्हें सिर्फ एक एक्टर था लेकिन एक प्लेबैक सिंगर था दोस्तों। कई गाना वो गाए हैं, हॉलैंड देश में शो दिया है, सूरीनाम में भी शो दिया है। तो विश्वजीत का फिल्म किस्मत का सॉन्ग है, जो निकटिन आखन शास्त्र में फिल्म जो रिलीज हुआ, और महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में आप सुनेंगे। लाखों है यहाँ दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता।

आप ही का हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। दिल मेरी ना सुने, कैसा दिल है ये दोस्तों।

ये कैसी बात है, जब दिल मेरा नहीं सुनता तो मैं दिल को क्या करूं। कभी कभी हो जाता है कि दिल बस में नहीं रहता है। दोस्तों, रब मिल गया फिल्म का सॉन्ग है, मोहम्मद इरफान।

हम अकेले इसलिए रहते हैं, हम अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि हमको सबकी तरह झूठ बोलकर अच्छा बनने का शौक नहीं।

दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दोस्तों ये तो एक फिल्म था ना, और आप जानते हैं हकीकत में कभी कभी चेहरा अच्छा होता है, दिल झूठा होता है। फिर भी ये फिल्म सच्चा झूठा जो है, ये फिल्म मनमोहन देसाई ने तैयार किया, जब तो शशि कपूर को लिया इस फिल्म में काम करने को, लेकिन शशि कपूर ने पूछा मेरा साथ किसने मेरे साथ एक फिल्म में काम करेगा, तो महेंद्र देसाई ने कहा मुमताज़ आपके साथ इस फिल्म में काम करेगा। तो शशि कपूर ने कहा नहीं नहीं, दूसर एक्ट्रेस को ले लेना तो मैं इस फिल्म में काम करूँगा। तो डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने कहा देखो शशि साहब, मैं दूसर डायरेक्टर बदल सकता हूँ, प्रोड्यूसर बदल सकता हूँ, गायक बदल सकता हूँ, मगर मैं मुमताज़ को नहीं बदलूँगा। तो जाकर रजेश खन्ना को लिया इस फिल्म में काम करने को दोस्तों, और रजेश खन्ना और मुमताज़ इस फिल्म बनाया और ये फिल्म एक हिट हुआ, एक जुबली हिट हुआ। तो शशि कपूर जब देखा कि ये फिल्म एक जुबली हिट हुआ तो शर्मिंदा हो गया, और आगे चलकर फिर शशि कपूर मुमताज़ के साथ काम किया। इसी फिल्म का एक सॉन्ग सच्चा झूठा।

जीएस खन्ना और मुमताज का हिट फिल्म सच्चा झूठा का सॉन्ग अभी आपने किशोरदा की आवाज में सुना। हर एक काम जो आपके रेडियो को से कराना है कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से नील सीफ तक 3 5 2 2 फिर सीफ पर आपको तार करना है।

ये लंबा लंबा गोरा गोरा अक्षय कुमार है दोस्तों, फिल्म रुस्तम का सॉन्ग जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया, अतीफ असलम और साथियों की आवाज़ में भी आपने सुना। फाहो हिंदुस्तान रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है दोस्तों, राजन के साथ। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर दे, झूठा ही सही, क्या बात है दोस्तों, वो भी सही बात है, चाहे झूठे झूठे फिर भी प्यार कीजिए। फिल्म जॉनी मेरा नाम का सॉन्ग है जिसमें देवानंद हेमा मालिनी काम किया दोस्तों। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा जब बना तो उस फिल्म में देवा और हेमा मालिनी भी था। इस फिल्म के बाद इन दोनों में प्यार हो गया, इन दोनों में प्यार हो गया और ताजमहल होटल में ये दोनों बैठ कर कुछ खा पी रहा था, तो वहाँ पर जाकर राज कपूर पहुँचा दोस्तों। राज कपूर थोड़ा से शराब पिया था और हेमा मालिनी के गाल छूने लगा वगैरह वगैरह, तो देवानंद गुस्से में आकर और हेमा को वहाँ पर छोड़कर और चला गया। ये भी होता रहता है।

चाहे झूठा ही सही फिर भी प्यार कीजिए, जिसका मुझे था इंतजार, फिल्म दोन का सम है जिसमें अमिताभ और सिन्नत अमन ने काम किया। दोस्तों फिल्म जिंदगी जिंदगी अपने पहले फिल्म जिंदगी जिंदगी के फ्लॉप होने के बाद 12 लाख कर्ज में डूबे हुए प्रोड्यूसर निर्मल ईरानी को सिन्नत अमन और अमिताभ बच्चन और चंद्र भारत ये सभी ने एक नई फिल्म बनाने को साथ देने का मौका दिया। और कहानी इस फिल्म में कोई पैसा नहीं लेंगे, तो ये तीनों ने कहा कि ये कोई पैसा नहीं लेंगे अगर ईरानी जी एक नई फिल्म तैयार करेगा। अपने दोस्तों के सलाह पे निर्मल जी ने फिल्म बनाने के तैयार हो गए। अमिताभ बच्चन और सिन्नत अमन ये दोनों ने कहा कि फिल्म में हम लोग काम करेंगे और एक चीज पैसा नहीं लेंगे। तो उसी समय में सालिम और जीवत ये दोनों के पास एक कहानी था, एक फिल्म था जिसने खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तो ये कहानी कुछ दूसरा कहानी नहीं था, ये था हिट फिल्म डॉन। तो ये फिल्म ईरानी जी ने ले लिया और ये फिल्म जोरदार से चला दोस्तों। उसी साल का तीसरा हिट फिल्म निकला। ये फिल्म दोन जो था ये उस साल का तीसरी हिट फिल्म मिला और ये फिल्म 7 करोड़ 20 लाख रुपए कमाई थी। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रोड्यूसर कितना खुश होगा उस समय पर अमिताभ बच्चन और सिन्नत अमन दोनों के ऊपर। तो इसी तरह से ये फिल्म का गीत जो मैं पेश करता हूँ, इस फिल्म तैयार हुआ है।

और दोस्तों तू मेरी आसमां परे और नए गीत कुछ पुराने गीत से आप लोग को हम सुनाएंगे करेंगे। मत कर इतना गुरूर, कभी कभी लोग को गुरूर बहुत हो जाते हैं। तो पंकज उदास अलका याग्निक क्या बताता है, मूवी के नाम है आदमी खेलो ना भैया खेलो ना।

और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं, कितना चाहते छुपाएंगे हम और कितना चाह छुपाएंगे तुम, और ये गीत है

छुपाएंगे बैठे आमिर खान या नाचो। दोस्तों जोंग ही जोंग आपको हम सुनाते हैं आंची और आप वहां हम यहां कि कभी राधा क्या बोलते हैं आओ सुना जाए।

0: से चलता हूँ।
1: और बोल ना राधा बोल, आज कुछ बोल किशन और राधा के सॉन्ग में आज हम मतवाला है दोस्ती, और राधा और कृष्ण का जोड़ी अत धुनिया पे और उससे जबर जोड़ी कहीं नहीं दोस्तों।

गोविंदा तेरे किशन कन्हैया मूवी का नाम है मेरा लहू। और दोस्तों आज कुछ किशन की मूवी में हम हैं तो एक और हो जाए, एक जान है हम आसमां के आसमां पे लिखेंगे दो।

और दिल चाहे तो आसमां पे जमी पे दिल परे और जहां भी चाहो लिख दूंगा तुम्हारा नाम और तू तू तू तू तू तरा थोड़ा ना दिल हमारा।

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी, रोमांटिक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के मूड में है। मूवी के नाम है झनकान फन नई खतख और बलमा नई खत नई खतख का आशा भोसले का सॉन्ग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो, दिल लगी ना किया करो।

0: किया करो एवरी ग्रीन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हमें नहीं देखा कभी पहले।

तेरा नाम में बसी ही खुदा। दोस्तों दोस्तों दोस्तों तो हम चलते हैं और वो है हरीश बालक की ओर। दोस्तों तो हरीश बालक आपको क्या सुनाएंगे, यहां से आपको हम सुनाते हैं।

मई तो लाई है कौनची मजेदार लाए ही और उस्तादो के उस्ताद हरीश बालक का गीत आपको हम सुनाए है दोस्तों। तो कुछ आज लोकल सॉन्ग आपको हम सुनाएंगे। तो हम चलते हैं राम प्रसाद राम खेलावन के ओर, वो क्या गाते हैं।

कठिनी भिनी छोरा। तो ये गीत हम आप लोग को सुना दिए हैं हमारे दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं और पातर मोरे लग्या रॉबी गोगार इस गीत को गाए हैं। चलो सुना जाए।

सुगनवा तू और पांती मोरा ले जान, सुगनवा तू कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे हमारे यारो। तो कुछ बैठक गाना और लोकल सॉन्ग अपने पुराने पुराने कलाकार सुरीनाम के हम याद करते हैं और उसमें से एक कलाकार थी श्रीमती औधराजी घिसे डूबे उस्ताद हरीश बाल के साथ मेरे साथ साथ श्री राम प्रसाद राम खेलावन और मेरे ख्याल से ढोल बजाए थे रकीब ने। दोस्तों आओ सुना जाए।

औरो सरजू में करो स्नान श्रीमती औधराजी घिसई दूबे उस्ताद हरीश बालक साथे साथ श्री राम प्रशांत राम खेलावन रकीब जी भी उसमें उस्ताद को उस्ताद है दोस्तों। तो हम चलते हैं उस्ताद देवा की ओर। देवी दीन घोरई इसका असली नाम है और जिसे लोग देवा के जान से जानते हैं, बहुत मशहूर थे अपने जमाना में, अभी तक उसका गीत बहुत लोग पसंद करते हैं। तो आओ चला जाए उस्ताद को उस्ताद देवा क्यों रे।

आएंगे, उसके बाद हम चलते हैं और बैठक गाना, और उस्ताद वो है जगदीश। जगदीश है दोस्तों, और ये कौन जगदीश है जो गाए है चिरैया बिन बोले, चिरैया बिन बोले, और ये जगदीश गाए है दोस्तों। तो जगदीश का ये सॉन्ग आओ सुना जाए।

और चिड़ैया बने बोले मैं ना जाऊंगी, भैया बोले हम ना जाऊंगी। तो उसके बाद हम चलते ही एक गीत है, ये गीत बहुत मशहूर थे, सूरीनाम देश में बहुत मशहूर गीत थे, और वो है शुकी अक्कल का दोस्तों। और हम खुद ही इस गीत को बहुत दिन हो चुका है नहीं सुना है, और आज रेडियो फाहून के माध्यम से हम आपको सुनाने चाहते हैं, और वो है सुकी अक्कल का ये जोंग है।

als ze maar een goeie is. Dan gaat het om wie dan ook mensen. Chahe jo bhi mile, lekin acha hona chahiye. To ye baat hai suki kal ka zong. Dosto, koi zamana mein. Aur wo ani bodha. शायद पुराने लोग की तो पता होगा, हमारा यौंगर को शायद मालूम बहुत कम होगा, लेकिन आनी बोधा भी अपने ज़माने में अपने समय पे बहुत पॉपुलर थे भैया। कौन ऐसन जगह पे आनी बोधा का गीत नहीं होते थे। तो आप लोग को हम चलते हैं एक गीत की ओर, फन आनी बोधा का ये सॉन्ग है।

भी ये कुछ पुराने क्लासिक ओल्ड यानी कि उस्तादों के जो उस समय पे कोई समय पे ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे दोस्तों। उसके बाद एक गीत को हमारा जो है भिखारी जी भी गाए थे और वो समय पे कौन लोग है जो इस गाने पे नहीं नाचे थे या गुनगुनाए थे। तो हम चलते हैं उस्तादों के उस्ताद और वो है भिखारी सॉन्ग को गए थे। आओ सुना जाए कौन से सॉन्ग आज जैसे शुरू होगा आपको तो पता चल जाएगा।

भी छेद लेते हैं दोस्तों, स्कॉर्पियन भी लोग कहते हैं। और जो स्कॉर्पियन जो छेद लेंगे भैया, तब तो उसको दवा दारू कुछ और है। और जब बरैया छेदी तो फिक्स चलेगा, और फिक्स के बाद में स्लिंगोली चलेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं और वो भी हरिदत्त जयराम की ओर। और ये ना है हबड़ा कटावे वाला, ये कुछ और है दोस्तों, और सुना जाए।

और दोस्तों छोड़ दे पीना शराब के बातचीत है, हम एक गीत और जाते हैं सनातन की ओर।

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी, रोमांटिक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के मूड में है। मूवी का नाम है झनकान फन नई खतक और बलमा नई खत नई खतक का आशा भोसले का सॉन्ग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो।

0: क्या करो एवरी ग्रीन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं देखा

0: और तेरा नाम में बसी ही खुदा। दोस्तों
1: मुकेश भाई थी मुकेश, करोड़ों का दिल चुराने वाला, हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में हसरत जयपुरी शैलेंद्र।

लग जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

और दोस्तों जैसे बताए गए आज हम कुछ यानी कि हॉट वन सॉन्ग आप लोग को हम नॉन स्टॉप डीजे रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे।

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

प्यार में दोस्तों और जॉनी का प्यार आप तक पहुंचे। और कहते हैं जॉनी भी कि किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल के कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफाई का, फिर क्यों बेवफाई को वो इल्ज़ाम दे रही है। इल्ज़ाम लगाना तो बहुत सहज काम है हमारे यारो, लेकिन प्यार निभाना जो है वो उससे मुश्किल काम भी है। तुम हकीकत हो या फरेब, मेरी आंखों का ना दिल से निकलता हो ना जिंदगी में आते हो। और चला जाए एक गीत की ओर।

और मुझे भी इष्ट है, और तुझी से मेरी जान जिंदगानी। जॉय मुखर्जी का ये फिल्म है, परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग है हमारे यारो। तो कहते हैं प्यार में क्या क्या नहीं होते हैं, कि मुझ पे पाने के तुम जिद ना करो, मुझे पाने की तुम जिद ना करो, किसी के चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं। मारे तो लाखों, मरे तो लाखों होंगे तुझ पर, मरे तो लाखों होंगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूं।

रे तू ही मेरी पीवर हो दोस्तों। तो ये सब गीत हम आप लोग को आज चलाते हैं कि नहीं पसंद मोहब्बत में मिलावट मुझको, नहीं नहीं पसंद है मुझको मोहब्बत में मिलावट मुझको, अगर वो मेरा है तो ख्वाब भी बस मेरे ही देखेंगे। और ये सब मोहब्बत भरी प्यार भरी शेर भी आप लोग को लिए हम आज पढ़ते हैं दोस्तों, कि अपनों के बीच बेगाने हो गए हम, अपनों के बीच बेगाने हो गए हम, प्यार के लम्हे अनजानी हो गए है, जहां पर फूल खिलते थे कभी आज वहीं पर वीरान हो गए है। कहते हैं फिल्म के नाम है जिंदगी और तूफान, सॉन्ग है एक हसरत की एक आंचल की मुझ पे प्यार मिली।

एक हसरती थी कि आंचल का मुझे और प्यार मेरे। मूवी के नाम है जिंदगी और तूफान। और मैजी मुकेश इस गीत को आप सबके लिए गाया है दोस्तों। तो हम और चलते हैं और आग को कि सांसों की दूर छूटी जा रही है, सांसों की दूर छूटी जा रही है। किस्मत की हमें दर्द दे, किस्मत भी हमें दर्द देती जा रही है। मौत की तरफ, मौत की तरफ है कदम हमारी। मोहब्बत भी हमसे, मोहब्बत भी हमसे छूटी जा रही है। और दोस्तों कुछ शायर और शायरी भी आप लोग को हम बताते ही रहेंगे कि बड़ी अजीब सी बंदिश है उसकी मोहब्बत में, बड़ी अजीब से बंदिश है उसकी मोहब्बत में। ना वो खुद कैद कर सके, ना हम आज़ाद हो सके। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग की ओर।

सनम और ऐ सनम, और ये प्यार हम किसी नहीं सिर्फ तुमसे ही करते हैं। कुमार शानू ने आपको इस गीत को सुनाए हैं। अभी और मोहब्बत भरी प्यार भरी गीतों से हम आप लोग को शिवा करेंगे दोस्तों, कि कहते हैं तुम मिल गए तो मुझसे नाराज है खुदा, तुम मिल गए तो मुझसे नाराज है खुदा, कहता है कि तू अब कुछ मांगता नहीं है, इसलिए कि जो मांगते थे उसको तो मिल गया दोस्तों, तो अब खुदा से मांगेगा क्या। तो ये इसका मतलब है हमारे यारो कि कहते हैं दौलत की जब चाह थी, दौलत जब कमाना चाहते थी तो काम करने निकल गई, दौलत की चाह थी तो काम करने निकल गई, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गई, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चों ही घर से निकल गई। तो ये सब बात है कि बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है कि आप हमारे ये गीत को सुनना चाहते हैं।

इसके बाद हम चलते हैं, फिल्म के नाम बता दी, फिल्म के नाम है गजल। उसके बाद हम चलते हैं, दिल की उदासियों के मिटाया नहीं सकता, दिल की उदासियों को मिटाया ना जा सका, एक तेरी याद की अनभुलाया ना जा सका, हमने की लाख कोशिश, हजारों किए जतन, पलकों पे आंसू को बैठाया नहीं जाता। कि कहते हैं खुदा, कहते हैं कि खुदा करे वो मोहब्बत जो तेरी नाम से है, खुदा करे वो मोहब्बत जो तेरी नाम से है, हजार साल गुजरने पे भी जवान रहे। कौन नहीं चाहते है और कौन नहीं चाहते। हम चलते हैं एक लव सॉन्ग, और ये क्या है मिलकर सुना जाए।

0: तुमने वहां से पुकारा और जोने यहां से अपने प्यार को आपको दिलों तक चलाया कि कहते हैं तमाम उम्र अपनी जिंदगी से दूर रहे, तमाम उम्र अपनी जिंदगी से दूर रहे, तेरी खुशी के लिए तुझसे दूर रहे। अब इससे बढ़कर वफा की सजा क्या होगी कि तेरी होकर भी तुझसे दूर रही। तो कुछ रोमांटिक यानी शेर भी आप लोग को हम बताते हैं कि मेरी चाहत देखनी है तो मेरे दिल पर अपना दिल रखकर देख। हाँ दोस्तों, कि मेरी चाहत देखनी है तो मेरे दिल पर अपनी दिल रखकर देख, तेरी धड़कन ना बन जाए तो मेरी मोहब्बत ठुकरा देना, तेरी धड़कन ना बन जाए तो मेरी मोहब्बत ठुकरा देना मेरे हुजूर। हम चलते हैं।
1: खूबसूरत गुनाह करने दो,

रुक से जरा नकाब उठा दो और मेरे हो जोर। तो दोस्तों हम अपना प्रोग्राम को और आगे और बढ़ाते हैं कि तमाम उम्र अपनी जिंदगी से दूर रहे, तेरी खुशी के लिए तुझसे दूर रहे। अब इससे बढ़कर वफा की सजा क्या होगी कि तेरे होकर भी तुझसे दूर रहे। तो मोहब्बत भरी प्यार भरी गीतों की भार प्रोग्राम यहां से हमारे चलते हैं। होने तो होने दो मुक्तफ़त मुझको आँच ही होठों से अबस, बात ना तो ये समझ रही है पर गुफ़्तगू कर जरी है। तो दोस्तों प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम यहाँ से हमारा चलते हैं और अगला सॉन्ग क्या होगा आओ मिलकर सुना जाए।

और पांच आई वहां दिल को और राजकुमार के का कुछ गीत है उदासियों उदासियां इश्क की पहचान है, उदासियां इश्क का पहचान है, मुस्कुरा दिया तो इश्क बुरा मन गया, उदासियों इश्क का पहचान है, मुस्कुरा दिया तो इश्क बुरा मान गए। तो दोस्तों कुछ प्यार भरी गीतों, मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती, मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती अगर तेरी चाहत अधूरी नहीं होती, कुछ उलझने कुछ मजबूरियां होती बेशक मगर प्यार में इतनी दूरियां नहीं होती। प्यार भरी गीतों के बिहार एक सॉन्ग सुना जाए।

और खो गया है, क्या खो गया है, खो गया है और वो मेरा प्यार खो गया है हमारे यारो। और ये प्यार जो खो जाता है तो बहुत दुख होता है, तो बहुत दुख होता है। और कुछ शायर और शायरी आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों, प्यार भरी गीतों का महार प्रोग्राम। यहाँ से हम चलते हैं, कुछ शायर और शायरी हो जाए कि मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा हमारे यारो। कि कहते हैं कि एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, हर एक रिश्ता सी जमीन से तोड़ जाएंगे, हर एक रिश्ता इस जमीन से तोड़ जाएंगे, जितना जी चाहे सता लो यारो, एक दिन रुलाते हुए सबको हम छोड़ जाएंगे। ये हमारा पहला शेर है आज की।

और उड़े जब जब जुल्फे तेरी, और ओ जब जुल्फे उड़ते हैं तो कुमारियों का दिल क्यों मचलते हैं, आपको पता है तो जरूर बता देना कि क्यों मचलते हैं, कि कहते हैं कि जब आपका नाम जुबान पर आता है पता नहीं दिल को क्या मुस्कुराता है। जब आपके नाम जुबान पर आता है पता नहीं दिल क्यों मुस्कुराता है, है तसल्ली होती है मन को कोई तो है अपना जो हंसते हुए हर वक्त याद आता है। अक्सर हम अपनी रात यूं बर्बाद करती है, अक्सर हम अपनी रात क्यों बर्बाद करती है, बैठ के किसी कोने में उनको याद करती है, उनके वापिस आने की उम्मीद तो छोड़ दी कब की, फिर भी ना जाने क्यों हम अपना वक्त बर्बाद करती है। हम चलते हैं नाइटिंगेल, लता जी का एक सॉन्ग है जो एक हिट फिल्म था, फिल्म के नाम है बॉबी।

जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम ने ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।

और अफसरे कोई लड़की इस हाल में कोई जरूर कभी 16 बरिश के थे दोस्तों। फिल्म के नाम है बॉबी और ये यानी कि एक हिट सुपर हिट फिल्म थी ऋषि कपूर का दोस्तों और डिंपल का। हम कहते हैं कि किस्मत के लकीरों पर, किस्मत के लकीरों पर यकीन, किस्मत के लकीरों पर यकीन करना छोड़ दिया है जॉनी, किस्मत के लकीरों पर और यकीन कर दिया है जॉनी। जब इंसान बदल सकता है तो ये लकीरें क्यों नहीं, ये लकीरें क्यों नहीं दोस्तों। दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता। दिल हो प्यासा तो पानी से गुजारा नहीं होता। कोई देखे तो हमारी बेबसी, कोई देखे तो हमारी बेबसी। हम सभी के हो चाहते हैं पर कोई हमारा नहीं होता। हम सबको हो जाते हैं पर हमारा कोई नहीं होता है दोस्तों। कि कभी किसी से प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना। कभी किसी से प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना। निभा सको तो चलना उसकी राह पर, वरना किसी के जिंदगी बर्बाद मत करना। फूल तुम्हें हम भेजाए हैं यहां रेडियो फाहुन के माध्यम से और ये है मैथी मुकेश और लता जी का ये सुपर हिट सॉन्ग।

और फूल भी, और भेजा है खत में और फूल नहीं, वो किसी का दिल है दोस्तों, यानी कि फूल के खुशबू में किसी के दिल भी चला जाता है कि कहते हैं ऐ दोस्त मैं तेरी खुशियां बांटे शायद ना आ सकूं, ऐ दोस्त मैं तेरी खुशियां बांटते शायद ना आ सकूं, हाँ ये वादा रहा जब गम आए तो खबर कर देना सारी की सारी, सारी की सारी ले जाऊंगा मैं, यानी कि तुम्हारा गम। तो दोस्त इसी को कहते हैं दोस्तों कि बहुत रोया है दिल, बहुत रोया है दिल उन्हें याद करके, बहुत रोया है दिल उन्हें याद करके, कुछ ना मिला रूप से भी फरियाद करके, वो कह गए मैं ना दूंगी साथ आपका, कोई पूछे उन्हें क्या मिला हमें बर्बाद करके। हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, वो है फिल्म के नाम है लव स्टोरी जिसमें, और वो है कुमार गौरव यंती इसमें काम किया है, और ये भी एक बहुत सुपर हिट फिल्म थी दोस्तों। ये गीत हम आप लोग को जरूर सुनाएंगे।

और मैं भी आई आई आई लव स्टोरी फिल्म का नाम है 1981 का। और जितने लोग इस समय पे 18-19 बरिश के थे दोस्तों, तो फुल हाउस के साथ हमारा सूरीनाम का जो जितना फिल्म हाउस थे वो एकदम फुल थे दोस्तों। इस फिल्म भी हम भी कई बार जाकर देखे है लेकिन मन नहीं भरा। एक मोहब्बत भरी प्यार का ये फिल्म है और हम हसरत करती है जिनकी वो तो छुप गई कहीं अगर तुम साथ दे तो नजर आ जाएंगी वो कहीं कि अपनी तमन्ना से कभी कुछ नहीं चाहा था हमने। अपनी तमन्ना से कभी कुछ नहीं चाहा था हमने। उसकी खुशी ढूंढते रहते तो बदनाम हो गई हम। बदल पे छलके है और नैतिक लता जी का ये एक जोंग है दोस्तों। आ मिलकर सुना जाए जिसमें अनिल ऋषि मीनाक्षी काम किए है। और इस फिल्म का हम खोजते हैं ये कौन फिल्म का गीत है। अगर जो हमें मालूम हो गया दोस्तों तो आपको हम जरूर बता देंगे। लेकिन और इस फिल्म में काम किया है मीनाक्षी काम किया है दोस्तों। और आओ मिलकर सुना जाए इस गीत को।

और बादल पे छलके आ, और इसमें अनिल कपूर, ऋषि ऋषि मीनाक्षी सोनम, नाइटिंगेल लता जी और श्रीस का ये गाया यानी कि फिल्म है, और बदल पे छलके है, बदल पे छलके है सॉन्ग का नाम है। और दोस्तों हम चलते हैं कुछ शायर और शायरी के ओर, और कहते हैं कि पलकों से आंखों की, पलकों के आंखों की हिफाजत होती है, पलकों से आंखों की हिफाजत होती है, धड़कन दिल के अमानत होती है, हाय और हमारा रिश्ता भी बड़ा प्यारा है, कभी चाहत तो कभी शिकायत होती है। और कितने लोग हैं जो अलिंस्तांद है दोस्तों, जो अकेले रहते हैं, अकेलापन है, मेंस दी अलिंस है फॉर दी मेंस हैपिक ही नाम लिख अनपार मोशाइस एंड खादरों कि ना साथ है किसी का ना सहारा है कोई, ना साथ है किसी का ना सहारा है कोई, ना हम हैं किसी के ना हमारा है कोई। कहते हैं चेहरे के हंसी से, चेहरे के हंसी से हर गम छुपाऊं, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला पर कुछ ना बताऊं, कुछ ना रोतो, कुछ ना रूठो कभी पर सबको मनाओ, खुद ना रूठो पर किसी को, पर सबको मनाओ, ये राज है जिंदगी का, बस जीते जाओ। और कभी कभी प्यार करते हैं तुम किसी से, लेकिन वो अमानत किसी और का है।

दोस्तों तू प्यार है और किसी और का और तुझसे चाहता है कोई और है कि कहते हैं प्यार का बदला कभी चुका नहीं सकेंगे, प्यार का बदला कभी चुका ना सकेंगे, चाह कर भी आपको भुला ना सकेंगे, आप ही हो मेरे लबों की हंसी, आपसे बिछड़ कर कभी मुस्कुरा ना सकेंगे। और जो लोग अकेले रहते हैं वो कहते हैं फिर से

तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरी महफिल में चला आया हूँ। अंदाज वही है बस अल्फाज नया लाया हूँ। ऐ काश दूर रहने वाले ठड़को एक बात, तुहके एक बात कहना चाहता हूँ। अगर मेरा ख्याल आए तो अपना ख्याल जरूर रखना।

ये तो सही बात है दोस्तों, जैसा मेरा प्यार है वैसा हमारा गुस्सा वो भी है दोस्तों। आपको यहाँ गीत में बताए गए है कि कहते हैं किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो, किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो कि उसको जब भी प्यार मिले तो तुम याद आ जाओ।

कहते हैं तुम्हें तन्हाई में, दिल डूबा है गमों की गहराई में, हमें मत ढूंढना दुनिया के बीच में, हम मिलेंगे तुम्हें तो तुम्हारी ही परछाई में। तो दोस्तों ये कुछ शायरी और शायरी आप लोग के लिए हम चलाएं।

क्या मांगूं, इस गीत को मांग किया है, इस गीत को मांग किया है। तो आज हम आप लोग को कुछ तक तक नहीं घंटे का गीत सुनाएंगे, आओ मिलकर सुना जाए कौन सा गीत है दोस्तों। और प्यार भरी गीतों का भान प्रोग्राम यहां से हम चलाते हैं।

तेरी जान मैं बन जाऊं, कुछ दर्द भरी शायर भी आज लोग को बीच बीच में हम सुना देंगे दोस्तों, कि सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते हैं। पांच छटक वो रहे दर्द तमन्ना रहता है पास, जब तक वो रहते दर्द दर्द जो है तमन्ना रहता है। फायदा या दोस्तों जता है फिर एक आंख की काजल की तरह। और दोस्तों हम चलते हैं तुझको देखा तुझको चाहा, और अगर जो तुझको देखा है तुझको चाहा है तो बीच में और क्या होता है, और तो कुछ नहीं हो सकता है ना।

देखा तुझे चाहा, परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है। फिल्म के नाम है छोटी सी मुलाकात। छोटी की मुलाकात के बाद में हम चलते हैं कुछ बेवफाई, कुछ बेवफाई बेवफाई शायरी आप लोग को हम सुनाएंगे कि फूल के साथ कांटा भी नसीब होता है, फूल के साथ कांटा भी नसीब होता है, खुशी के साथ गम भी नसीब होता है। मजबूरी ही ले डूबी है और आशिक को, मजबूरी ही ले डूबी है आशिक को, वरना खुशी से बेवफा कौन होता है। हमारे यारो तो हम चलती है बाहर आने तक, क्या होगी बाहर आने तक, क्या होगी अनुराधा पौडवाल की ओर हम बढ़ते हैं।

और सनम तुझे कितना भी चाहूं और मोहब्बत इनायत करम दिखते हैं तो उसके बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर हम बढ़ते हैं। ये जो मोहब्बत में तीसरा होता है, ये जो मोहब्बत में तीसरा होता है, मुझे उस तीसरे से नफरत है दोस्तों, कि तेरे पास आका मेरा, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। पद्माश्री मोहम्मद रफी आशा जी का गाया हुआ सॉन्ग। इस फिल्म में माला सिन्हा धर्मेंद्र ने काम किया है और आकर सब कुछ मिलकर सब लोग मिलकर इस गीत को और सुना जाए। उस फिल्म में न सिर्फ माला सिन्हा धर्मेंद्र काम के, महमूद जी भी काम किया है और कितने लोग काम के। सुपरहिट फिल्म 1905 तक का ये गीत है दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

तेरे पास आकर मेरा वक्त और वो तो गुजर जाता है। कि कहते हैं जिंदगी में प्यार का पौधा लगाना सबसे, जिंदगी में प्यार का पौधा लगाना, लगाने से पहले जमीन को परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में बेवफा नहीं होती है। जिंदगी में प्यार की पौधा लगाने से पहले जमीन को परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी के फितरत में वफा नहीं है। हमारे यारो ती चलते हैं और आगे को एक सॉन्ग लेकर कि भरी दुनिया में आखिर दिल होता है। पद्माश्री रफी जी का आवाज में इस फिल्म में आशा परीख मनोज कुमार ने काम किया है।

और बड़ी दुनिया में आखिर दिल, और अगली दुनिया में आखिर दिल परमाशी रफी जी का सॉन्ग ये गीत था हमारे यारो। और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं, तो चलते हैं आओ मिल जाएं। फिल्म के नाम है प्रीत, प्रेम गीत की ओर है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम गीत की ओर है कि तेरे बेवफाई के गम नहीं, मगर तू बेवफा है ये दुख भी कम नहीं। बहते है तेरी बेवफाई का गम नहीं, मगर तू बेवफा है ये दुख भी कम नहीं है। ये कभी कभी लोग बेवफाई करते हैं दोस्तों, तो दिल जो है वो बहुत टूट जाता है। और जिसको दिल टूट जाता है उसको जोड़ने में बहुत दिन लगता है। उसको कोई दवा दारू ठीक नहीं कर सकता है। अगर तो दिल को ठीक करना है तो उसको प्यार जो है, जो प्यार है वो प्यार को फिर से वापस लाना है, फिर वो प्यार को जगाना है। उस प्यार को, उस दिल को उस भरोसा देना है कि दिल अब तुम्हारा हम कभी नहीं तोड़ेंगे, ये दिल के बात है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल की ओर है।

और आओ मिल जाए हम दोनों। फिल्म प्रेम गीत का ये सॉन्ग है जगदीप सिंह अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ सॉन्ग है दोस्तों। तो कभी कभी एक दर्द भरी शायरी होता है, जब किसी को दिल टूट जाता है तो जुड़ने में बहुत दिन लगता है, कि कहते हैं मोहब्बत की मोहब्बत की मोहब्बत की सबसे बड़ी कमी ये है, मोहब्बत की सबसे बड़ी कमी ये है कि भरोसा गुजर जाने के बाद भी मोहब्बत रहती है, भरोसा गुजर जाने के बाद भी मोहब्बत रह जाती है दोस्तों। कभी कभी कि लोग कहते हैं भी देख कुछ महसूस नहीं होता, लोग कहते हैं बिन देखे कुछ महसूस नहीं होता, हम तो बिन देखे यूं ही हर पल हर लम्हे महसूस करता हूं कि बेखुदी में सनम रोमांटिक रोमांटिक सॉन्ग आपको हम सुनाते हैं।

और बेखुदी में जो सनम उड़ गए। और दोस्तों ये एक रोमांटिक सॉन्ग फुल सॉन्ग थे दोस्तों। और इसके बाद हम करते हैं जाते हैं कि कहते हैं क्या कहते हैं मोहब्बत की सबसे बड़ी कमी आप तो जानते हैं दोस्तों, ये है कि भरोसा किसी यानी भरोसा गुजर जाने के बाद भी मोहब्बत रह जाती है। तो और इसके बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग के ओर हम जाते हैं हमारे दोस्तों। है कि कभी कभी यह रात को जो लोग सो नहीं पाते हैं तो उसको वजह क्या होता

और आप की कसम किशोर जी और नैतिकेल लता जी का ये सॉन्ग है, ये अगर रात को आपको नींद नहीं आते है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्यार में कभी नींद भी नहीं आते है कि आसमान का चांद, आसमान का जो चांद है, आसमान का चांद तेरी बाहों में हो, तुझ जो तुझो तुझो चाहे तो रहो में हो, तुझको चाहे तो तेरी राहों में हो, हर वो कड़वट हो पूरा जो तेरी आंखों में हो। तो दोस्तों ये कुछ प्यार भरी गीत

0: तो की बहान प्रोग्राम यहाँ से है। और ये गीत जो है, ये गीत हम मेरे ख्याल से हम पहला बार इसको चला रहे हैं। सॉन्ग के नाम है बुम बुम भोले, फिल्म के नाम है तारी जमी पर।
1: अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकना का हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकला का बिको चिको सिली सिली सिली गो बगड़दुम जगड़दुम चिकी चक चो।
2: Yeah!

और बूम बूम भोले फिल्म के नाम ही तारे जमी पे, तारे जमी का ये सॉन्ग है हमारे आएंगे। और ये जो गीत है हमारे यारो, आप लोग को हम कुछ एक दो शेरी बीच बीच में भी बोल देंगे। तो कहते हैं मत सोच तू इतना यारो, मत सोच तू इतना कि जिंदगी के बारे में, मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दिया है यारो उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तो हम चलते एक फिल्म के नाम है दरिंदा। दरिंदा एक बहुत हिट फिल्म थी। हम इस फिल्म के कोई ज़माने में सूरीनाम में हमने देखी थी, तो हम तो छोटे थे दोस्तों, लेकिन ये फिल्म देखती सीफ तक में रिलीज हुआ था हमारे सूरीनाम में। जहाँ तक मुझे याद है कि इस फिल्म को हमने मालूम नहीं कौन थिएटर में देखे थे, लेकिन उस वक्त हमारा जो उम्र थे बहुत बड़े नहीं थे। यंग रिटायर्ड का ये फिल्म है, तो आपको हम सुनाते हैं दरिंदा का, फिल्म दरिंदा का एक सॉन्ग।

और प्यार कर ले, और कर ले हमारी गोरी, और ये गोरा रंग जो आपके है वो एक दिन उतर जाएगा। कि कहते हैं जब आपका नाम जुबान पर आता है, जब आपका नाम जुबान पर आता है, पता नहीं दिल क्यों मुस्कुराता है। है तसल्ली होता है मन को, कोई तो है अपना जो हंसते हुए हर वक्त याद आता है। तो है अपना ना दिल, तो अपना दिल जो है दोस्तों, तो वो तो आवारा होता है ना भाई। तो आप लोग को फिर कहते हैं कि दिल जब आवारा होता है तो उसको जोर से पकड़ना है। कि हेमंत कुमार आपको क्या कहते हैं, हेमंत कुमार आपको क्या कहते हैं, जब आपका दिल भटकता है तो आओ मिलकर जुना जाए।

है अपना दिल तो आवारा है और जो ना जाने तो किस पे वो आ गया है कि कहते हैं दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता। दिल हो प्यासा तो पानी से गुजरा नहीं होता, कोई देखे तो हमारी बेबसी हम सब के हो जाते हैं पर कोई हमारा नहीं होता। ऐ दोस्त मैं तेरी खुशियाँ बांटते शायद ना सकूं, हाँ ये वादा रहा जब गम आए तो कबर खबर कर देना सारे के सारे ले आऊंगा। तो और हम चलते हैं प्यार से भी ज़्यादा तुझे हम चाहते हैं। आशा जी और मोहम्मद अजीज़ इस गीत को गाया है, आओ मिलकर सुना जाए। हमारे यारो सुनने वालों इस गीत को, मूवी का नाम है इलाका फन 1989।

0: और प्यार से भी ज्यादा तुझे हम, और क्या करते हैं दोस्तों, प्यार करते हैं ना, कि मेरी आंखों भी मुझसे एक दिन ये एक ये कह देंगी कि ख्वाब उसके ना देखो करो, हमसे अब रोया नहीं जाता। मेरी आंखें भी मुझसे एक दिन ये कह देंगी कि ख्वाब उसकी ना देखो देखा करो, हमसे अब रोया नहीं जाता। क्या कहूँ तुम्हें, ख्वाब कहूँ तो बिखर जाओगी, दिल कहूँ तो टूट जाओगी। तुम्हारे नाम जिंदगी रख देते हूं मौत से पहले हमारे साथ ना छोड़ पाओगे। कि दोस्तों हम चलते हैं, मूवी का नाम है तीसरी मंदिर, जिसमें शमी कपूर, आशा परेख, प्रेम चोपड़ा, हेलन ने काम किया है, और ये बहुत मशहूर फिल्म थी एक जमाने में। और ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों इस गीत को आपको सुनना चाहिए, मूवी के नाम है तीसरी मंजिल।
1: मुड़ मुड़ कर देख रही हैं
0: और हम भी देख रहे हैं,
2: पीछे आप हैं, खास बात नहीं,
1: यूं ही देखती रहीं आप तो यूं ही चलते रहेंगे हम पीछे पीछे।
2: यूं ही चलते रहे हम तो रास्ता कौन देखेगा,
1: रास्ता देखने वाला जो है पीछे पीछे।
2: और अगर ठोकर लग गई तो गिरेगा कौन,
1: गिरने की बात कैसी, थामने वाला भी तो है पीछे पीछे।
2: अच्छा अब आइए साथ साथ चलें।
1: जी नहीं, हमारी यही जगह है पीछे पीछे।
2: पीछे पीछे पीछे पीछे, दीवाने तो नहीं हो गए आप।

और दीवाना मुझसे मुझसा नहीं और इस पीछे पीछे क्या होता है दोस्तों, पीछे पीछे और कुछ होता है। तो आपको हम बताते हैं कितने लोग बहुत बेवफा होता है और जो बेवफा होता है उसके लिए आपको हम जरूर कुछ बताएंगे कि बेवफा लोग को क्या करना चाहिए, कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला अगर हो तो फासला क्या है, हौसला अगर हो तो फासला क्या है, वो तो ज़दा देके दूर जाकर बैठे हैं, अब किसी से पूछो कि मेरा खता क्या है। दोस्तों सब कुछ भुला दिया, ये मेरी वफा का कैसा सिला दिया, सब कुछ भुला दिया, ये मेरी वफा का कैसा सिला दिया, मौत हमें आते नहीं और जिंदगी हम ये पते नहीं।

अगर आपकी आंखें किसी को देखे तो उसको क्या पता है कि उसका हाल क्या होता है। हमारे यारों की कहते हैं, रोए तो बहुत तेरी बेवफाई की बात, रोए तो बहुत तेरी बेवफाई की बात, तेरे याद ना गई तेरी जाने की बात। तुम हमेशा खुश रहना, तुम हमेशा खुश रहना, बस मेरे साथ किया ये एक वादा निभानी। और हम चलते हैं मैं चली परमा श्री मोहम्मद रफी नाइटिंगेल लता मंगेशकर का ये लवली सॉन्ग आओ सुना जाए।

और मैं चली ना, और मैं चली। और ये गीत है परमाश्री मोहम्मद रफी का और लता जी का, नैतिकी लता जी का ये जोंग है हमारे यारो। और इसके बाद और आगे का प्रोग्राम हम आपको जरूर शायद, तो हम चलते हैं और आगे को हमारे यारो क्या कहते हैं कि पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है, किसी को चाहो तो सच्चा दिल से, क्योंकि जिंदगी फिर कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं यारो। तो हम चलते हैं गीत की ओर, और गीत है आपकी करीब हम रहते हैं, तो हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और कहते हैं दोस्तों, पलकों से आंखों की हिफाजत होती है, धड़कन दिल की अमानत होती है, है में हमारे रिश्ता भी बड़ा प्यारा है, कभी चाहत तो कभी शिकायत होती है, हमारे यारो। और ये प्यार भरी गीत हम आपके लिए, और इससे गीत जो है दोस्तों ये है ओ मेरे दिल की चैन, जिसमें रजेश खन्ना ने काम किया है, किशोर कुमार, एक रोमांटिक फॉल प्यार भरी गीत है जो हम आप लोग को चलाते हैं।

और दोस्तों ये प्यार भरी गीत जो है और ये मस्त भरी गीत है किशोर जी के, किशोर दादा जी इस गीत को गाए है। ये गीत जो है जो अब हम चलाने जाते हैं वो है काली काली काली काली यार लता जी का, नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है, लता जी के सॉन्ग है कि मैं चाहूं सपनों में भी साथ उसका हूं, इन हाथों में मेरी बस हाथ उसका हूं, चाहत मुझे इतना है उसे कि दिल मानता नहीं, कोई मेरे बात उसको बता देते। तो हम चलते हैं काली काली राती और काली काली राती याद सताते हैं, तो इस गीत आओ मिलकर सुना जाए।

और काली काली रतिया ये याद सताते हैं, काली काली रतिया याद सताते हैं हमारे यारो और यारो, तो ये बात है हमारी काली काली रतिया के बारे में।

और कुछ कन यानी कि गीतों की बहार प्रोग्राम यहां से हम शुरुआत करते हैं कि भरोसा इतना करो कि याद ऐसा करो कि हाथ ना हो, भरोसा इतना करो कि शक ना हो, इंतजार इतना करो कि कोई वक्त ना हो, प्यार ऐसा करो कि नफरत ना हो, कुछ अलग ही करना है तो वफा करना मेरे दोस्त, मजबूरी के नाम लेकर बेवफा तो हर कोई करता है। तो हम चलते हैं, हमको तुम तो हो गया है क्या नैतिक लता जी और मोहम्मद रफी जी परमा श्री मोहम्मद रफी जी और यानी कि करोड़ों का दिल चुराने वाला, और वो कौन है? हमारे मुकेश जी है।

हमसे तो हमारे लयस्तरार से प्यार हो गया है, और अगर आपको भी प्यार होगा तो हमें जरूर बताना कि आपको क्या और किससे प्यार हुआ है। अगर यह हो सके तो हमसे बता देना कि कहते हैं काश वो मुझे सीने से लगाकर मेरी सारी शिकायत दूर कर देते, काश वो मुझे सीने से लगाकर मेरी सारी शिकायतें दूर कर दे, मैं सिर्फ उनका हो जाऊं, मुझे वो इतना मजबूर कर दे कि हकीकत कहो उनकी ख्वाब लगता हूँ, हकीकत कहो उन्हें ख्वाब लगता हूँ, शिकवा करूँ तो उन्हें मजाक लगता है, शिकवा करूँ तो उन्हें मजाक लगता है, कितने जिद्दत से हम उन्हें याद करते हैं, एक वो जिन्हें ये सब कुछ मजाक लगते हैं। अगर जो शादी करना है तो जॉनी को याद कर लेना और मेहनी लगा कर बढ़ जाना, कल हो न हो और कल हो न हो लेकिन जॉनी को याद कर लेना। फिल्म के नाम है कल हो न हो और मेहनी लगा करे मेरा तलाश।

और माही कल हो ना, कल हो ना हो हमारे प्यारी जनता की कहते ही दर्द क्या होता है, ये जो दर्द जो है ना वो क्या होता है बताएंगे किसी रोज अपनी अपनी दिल की गजल जॉनी सुनाएंगे किसी रोज, दर्द क्या होता है जॉनी बताएंगे किसी रोज अपनी दिल के गजल सुनाएंगी किसी रोज। उन दिनों उन्हें दो परिंदों के खुली फिजाओं में हमारे होंगे तो लौट कर आएंगे एक रोज जरूर मेरी कब्र की मचान पर आईना लगा देना, मेरी कब्र के मचान पे और मेरी कब्र के मचान पर आईना लगा देना, उसे देखने की आखिरी उम्मीद अभी तक बाकी है हमारे दोस्त। तो हम चलते हैं मिलने के, तुम कोशिश जरूर करना, मूवी के नाम है दिल का क्या कसूर और कुमार शानू आशा जी का ये गाया हुआ बेमिसाल लवली प्यार भरी गीत है।

जरूर वादा तो और जरूर टूट जाता है कभी कभी वादा, जो लोग करते हैं वो टूट डालता है कि कहते हैं कोई गलती हो जाए तो दांत लिया करो, कोई गलती हो जाए तो डांट लिया करो, मगर यो रूठा ना करो हमसे, क्यों रूठा न करो हमसे, पागल सा पागल सा बच्चा हूँ मगर दिल का सच्चा हूँ, थोड़ा सा आवारा हूँ मगर तेरे ही दीवाना हूँ, कि कल हो न हो लेकिन जोनी का प्यार आपके साथ हो।

और बड़ी गुमान प्रति वोमन कहो ना कल हो न हो, शाहरुख का ये फिल्म है। और उसके बाद हम और आगे को अपना अपना प्रोग्राम को चलाते हैं, बनाते हैं, सुनाते हैं। हमारे यारो नखमाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और रेडियो के जरिए आपको हम और कुछ मिली जुली गीत से सेवा करते हैं कि कहते हैं सुनो तुम अपना ख्याल रखा करो, सुनो तुम अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा और कोई नहीं है। बस इतनी सी है चाहत तुमसे, बस इतनी सी है चाहत तुमसे, कभी दूर जाओ तुम जोनी के नजरे से, तेरे बिना हो जीना ऐसा दिन कभी न आए मेरे यारो, न जाने मेरे ये दिल कहाँ खो गया, तुझे पहली दफा देखा और तेरी हो गया, और तेरे दर से दिल आबाद रहा। फिल्म के नाम है दीवाना, दीवाना मूवी का नाम है, जिसमें शाहरुख खान ऋषि कपूर देविया भारती ने काम किया है, और एक दर्द भरी प्यार का सॉन्ग जो कुमार शानू आपको यहां से सुनाते हैं।

और तेरी दर्शी ये दिल अमाद हुआ हमारी। दोस्तों तो कहते हैं बिन तेरे अधूरा हूं मैं, तू मिल जाए तो जॉनी पूरा है। और कहते हैं दो चार दिन का इश्क हम नहीं किया करते हैं, और गए का इश्क हूँ यू ही किसी से प्यार नहीं करते हैं, और गई का घर का और इश्क हूँ और को यू ही किसी से प्यार नहीं करते हैं। तू मेरी सबसे खूबसूरत भूल है, तू मेरी सबसे सबसे खूबसूरत भूल है, तेरे हर खुशी और गम मुझसे कबूल है। अलका यागनी और शंकर महादेवन की ओर हम चलते हैं हमारे यारों।

पूरे छम्मा ही छम्मा है, और छम्मा के बाद कौनची होता है, हम वो आशिक है जो स्कूल छोड़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में हुआ आशिक तो को नहीं, लेकिन स्कूल में हुआ आशिक को नहीं, तू मेरे जिंदगी के वो खुशी है जिसे मैंने अपनी दुआ में मांगा है। हमारे यारो तो प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम है। हम यही कहते हैं हमारे यारो कि प्यार करना कोई छोटा बात नहीं है। कैसे छोड़ दूँ तुम्हें, प्यार करता हूँ तुमसे बस चाहत ही नहीं, और जरूरत हो तो मेरी जरूरत हो तो मेरी, प्यार मोहब्बत आशिक ये सब बस अल्फाज ही थी, लेकिन जब तू मिली मुझे जिंदगी में इन अल्फाजों की मजा ही बदल गई। तो और है दोस्तों प्यार भरी नगमों का बहार प्रोग्राम, यहाँ से हम चलाते हैं कि दुख की शाम हो या हो सुख की सवारे, और सब कुछ अच्छा लगता है जब साथ हो तेरा। तो ये बात सच है कि तुझे मेरे प्यार पर यकीन नहीं होता, लेकिन मेरे ये दिल है जो तेरे सिवा कहीं और नहीं होता है हमारे यारो। तो ये गीत है, फिल्म के नाम है अप्रैल फुल, और हम चलते हैं एक मस्त भरी प्यार भरी मोहब्बत भरी गीत की ओर।

और आ गले लग जा, फिल्म के नाम है आ अप्रैल फूल का ये, और ये प्यार भरी गीत फिल्म के नाम है यहूदी सॉन्ग, ये मेरा दीवाना है। दिलीप कुमार, मीना कुमारी इस फिल्म में काम किए, सिंगरेश मैथी मुकेश।

दीवानापन है। और ये है नाइटिंगेल मुकेश जी के आवाज में इस गीत को हमने चलाए है। हमारे दोस्तों परियारों क्या कहते हैं कि कहते हैं कि मेरे दिल की यही है दुआ, कभी दूर तुम ना जाना, तेरे बिन हो जीना, वो दिन कभी ना आए। तो हम सुनते हैं।

और मैं सोनिया और परमाशीन मोहम्मद रफी का और नतिल गिल लता जी का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं कि तेरी और मेरी रातों में बस इतना फर्क है, तेरी रातों को नाक बजता है और मेरी रातें रोकर

जी ये रफ़ी जी सुनाती है कि आवाज़ वो नहीं देगा, पर हमारे खातिर ये सुंदर सुंदर गीत और गाकर चले गए हैं सुनने वालों। हम बेशब्द हो जाते हैं क्योंकि ये सब गीत कभी पुराना नहीं होता है, ये हरदम से सदा ही नूतन रहेगा। नूतन मतलब कि नए रहेगा, नवा रहेगा। अब मेरे ख्याल से आप जिस तरह से सुनते हो, जहाँ पे भी सुनते हो, अगर आपको थोड़ा सा पकड़ आ जाएगा तो आप ज़रूर से इसे भी गुनगुनाने लगते होंगे। और साथ ही साथ मेरे ख्याल से आपको वो सब ख्याले जो है ताज़ा करा देते हैं। रफ़ी जी की आवाज़ में हमने श्रवण किए फिल्म का नाम दोस्ती।

दूसरों के परेशानियाँ का आनंद ना लिया करो, कहीं भगवान आपको वो गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलती है। तो इस पर हम जरूर से ख्याल रखें और ध्यान धरें।

दृष्टि नहीं, दृष्टि नहीं बल्कि दृष्टिकोण सही होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको यहाँ पर हम जरूर सुनाना चाहती हूँ, तो यहाँ से हम मिलकर सुने। एक अंधे को मंदिर आया देखकर, एक अंधे जो नेत्रहीन है, सूरदास है, उनको मंदिर में आया देखकर लोग हंस कर बोले, मंदिर में आए हुए लोग एक अंधे को देखकर बोले कि मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? ये सवाल किया है जो जिनका नेत्र है, जो देखते हैं, और वो सवाल करते हैं जो नेत्रहीन है कि मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? तो वो नेत्रहीन सूरदास अंधे ने मुस्कुरा के कहा, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है मेरे भगवान को, मेरे भगवान तो मुझे देख लेगा, इसलिए दृष्टि नहीं दृष्टिकोण सही होना चाहिए। वो अंधा बोध सूरदास क्या सुंदर जवाब दिया कि क्या फर्क पड़ता है, मेरे भगवान तो मुझे देख लेगा।

पता नहीं जिंदगानी का, वो तो बात सही है। अगले पल क्या होने वाला है ये तो मुझे भी नहीं खबर है मेरे दोस्तों। आपको बताती हूँ कि पेंसिल और पेन इन दोनों का अंतर क्या है। हाँ आप तो कह देते होगे, हाँ पेन और पेंसिल में अंतर है। पेंसिल जो है हम कहते हैं अपनी भाषा में पतलोत। पतलोत और पेन के बारे में, पेन और पेंसिल के अंतर जानिए जो जिंदगी से मतलब रखती है। पेन और पेंसिल के अंतर जानिए जो जिंदगी से मतलब रखती है। तो चल के हम यहाँ से जानेंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं ना मेरे दोस्तों, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल के बदले हमें पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। एक बच्चा जो शुरुआत करते हैं, या आप भी बड़े हैं जो शुरुआत करते हो कुछ लिखना चाहते हो, तो काफ़ी तौर पे पतलोत से लिखा जाता है, ताकि हम उसे कुछ गलती हो तो हम उसे सुधार सके। और अगर आप पेन से लिख दिए तो उसको सुधारना तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो यही अंतर है पेन और पेंसिल में।

लता जी के आवाज ये सुंदर सा गीत पेश किया गया। फिल्म का नाम धूल का फूल और गीत का बोल तो आपने सुन ही लिया है कि तू मेरे प्यार का फूल है, पर ये भी एक फूल हो गया है। हल्के फूल की सी है जिंदगी, हल्के फूल की सी है जिंदगी, बोझ तो बस खुशियों का है, बोझ तो बस खुशियों का है।

फिल्म नागिन से ये सुंदर सा गीत। लता जी की आवाज में ये जो हम सोचते हैं सुनने वालों, जो हम सोचते हैं वो सोच का प्रभाव मन पर होता है, जो हम सोचते हैं वो सोच का प्रभाव मन पर होता है, और मन का प्रभाव जो है वो तन पर होता है, यानी लेखाम पर। तो तन और मन का दोनों प्रभाव सारा जीवन पर होता है। मेरे दोस्तों, इसलिए प्यारे दोस्तों, भाई बंधु, सदा अच्छा सोचे और हम सब खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहें।

ख़त्म होने जैसा ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, ख़त्म होने जैसा ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई सुबह आपका हम सबका इंतज़ार करते हैं, हमेशा एक नई सुबह आपका हम सबका इंतज़ार करते हैं मेरे दोस्त। कम लोग हो पर अपने हो, कम लोग हो पर अपने हो, ज़िंदगी तमाशा थोड़ी तो है, ज़िंदगी तमाशा तो नहीं कि भीड़ चाहिए। खोए हुए चीज़ अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, खोए हुए चीज़ अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, जैसे कि वक्त और बचपन।

हम क्या कहें, हम तो भी बेशब्द हो जाते हैं। ये सुंदर गीत फिल्म का नाम 20 साल बाद, 20 साल बाद फिल्म से निकाला गया लता जी की आवाज़ में, कि कहीं दीप जले और कहीं दिल। मंदिर, मंदिर का मतलब मन और दीर, मन के अंदर जाना ही मंदिर है और अंदर जाने का रास्ता केवल ध्यान है। आनंद वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ जहाँ मन मिले।

एक दिव्य शक्ति जो इस संसार को चला रही है, एक दिव्य शक्ति जो इस संसार को चला रही है, उससे यही प्रार्थना है, उससे यही प्रार्थना है कि वो हम सब का भला करे, हम सब का खुश रखे, हम सबको खुशी रखे, हम सबको निरोग रखे, हम सबको आत्मिक शक्ति प्रदान करे।

फन होम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 6 2 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

हाँ अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नई गिनती फिर से ही तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैथ मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवरफाउन हिंदुस्तानी और रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर मैं थी मुकेश, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकती एन सही फिल्म का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: हाँ? किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा, तवारीख गवाह है, यानी खुशकी देने इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। आओ, ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेकदिन सशन शस्त्र का ये फिल्म हम आपको सुनाएं। चलिए, अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से। जी हाँ।

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य। और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा, पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाए, निकती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए यह शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाएं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.55fm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत इस तरह से आ रहा है।

0: आई लव यू, ये शानदार द्वैत हमने पेश की ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।
1: Oh, my God.

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकती निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।

आओ लता जी मिलके आपको सुनाए हैं। फिल्म में है राही बदल गई है, इसी फिल्म से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश की और आप उम्मीद है सुने होंगे और अवश्य अच्छा लगा होगा। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और मैथिली मुकेश, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, और देखते हैं किशोर कुमार जी साथ हैं।

के सच्चे दुश्मन हैं ये जो मिलावट करते हैं। इनकी बदौलत कितने लोग मौत से पहले मरते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ाना सबसे बड़ा सवाब है। कौन है सच्चा

दो जासूस करें महसूस, रफ़ी साहब और माइती मुकेश मिलके ये गीत गाए हैं। आपको पता है रफ़ी साहब मुकेश जी बहुत गाने नहीं गाए हैं, कुल मिलाकर जहाँ तक जोड़ा गया है, मिले हैं लोग को, मुझे भी मिला है, तो द्रियंत तक गाने हैं, उसमें से ये एक था। टोटल मिलकर यानी कुल मिलाकर द्रियंत तक गाने रफ़ी साहब और मुकेश जी साथ मिलकर गाए हैं, और उन द्रियंत में से यानी 23 में से ये एक था। दो जासूस करे महसूस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है देखते हैं, हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, ये गीत लेकर है।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला मुकेश जी आपको सुनाइए मेरे प्यार में क्या वफा न थी। यहाँ क्या बात है, ये गीत सुनकर रफ़ी साहब ने कहा अगर प्यार की बात है, वफा की बात है और बेवफा की बात है तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं कि जवानी और दीवानी की बात कर रहा है। लीजिए रफ़ी साहब की आवाज़ में ये जवानी दीवानी की बात। जवान तुम हो जवान हम हैं,

शंकर जय किशन के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश हुआ जवान तुम हो जवान हम हैं, फिल्म दुनिया में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करते हैं, ये है, इसे चून अभी नहीं किए थे क्योंकि भी मुझे भी नहीं पता गीत कौन सा है। चलो मिलकर सुनते हैं, आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूँ।

ये कश्मीर है ये कश्मीर है गीत के शब्दों से यही पता चलता है कि इसकी शूटिंग अवश्य हुई होगी कश्मीर में। बर्फीली यादों, बर्फीली पहाड़ों, गर्मी भी हो सकता है, पता नहीं। बहरहाल ये गीत हम आपको सुनाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसे मैंने कहा, बर्फीली पहाड़ों में कश्मीर के ये शूट किया हुआ होगा। बहरहाल चलो कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और पेश करते हैं ये गीत, क्या ख्याल है।

कि हम आधा आधा लता जी और अपनी किशोर कुमार फिल्म आज़ाद में से निकाले हैं और हमने पेश किया बस सिर्फ आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है ये रफ़ी साहब की, ये रफ़ी साहब का ये गीत है जिसमें लता जी भी साथ दी है और फिल्म है हंसते जख्म। इस तरह से

फिर हम हंस दिल जख्म में से निकाले हैं लता जी और रफी साहब की आवाज़ में ये पेश किया गया, बस आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं और वो ये है, इस तरह से ये दुएत है उन्हीं कौमी के साँच पर।

दिल ने फिर याद किया। ये ओपी स्टार म्यूजिक नहीं, सोनी ओमी का।

0: रफ़ी साहब आशा जी, ये हाँ दिल ने फिर याद का किया निकतीन सहन सस्ते खा, ये फिल्म सोनी कोमी के साज पर हमने पेश की ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। क्या ख्याल है कर जमाया आपको ये सुनाऊं, वाह क्या बात है।
1: सुनी

सुंदर भी लगती हूँ, अच्छी भी लगती हूँ, आ जा रे आ जा शर्म। आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, बहुत दिनों बाद शायद आप ये गीत सुनोगे, इस तरह से आ रहा है।

किसका रास्ता देखे, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की हो फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये ब्रोकन हार्ट सॉन्ग इस तरह से।

0: चला जाऊंगा दो अश्क बहा लूं तो चलो रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, ये धमाकेदार गीत है। जी हाँ, चलो सुनते हैं क्या इसका नाम है, क्योंकि नाम बताने में झिझकता है।
1: सुनो, तुम्हारा असली नाम क्या है?
2: जी मेरा असली नाम जॉनी।
1: और नकली?
2: नकली भी जॉनी।
1: इसके अलावा भी कोई नाम है?
2: जी हाँ, जानी। आपको ज्यादा पसंद है?

ओ मेरे राजा, ओ मेरी रानी, देर से आले आया लेकिन वादा तो निभाया। जी हाँ, आप छूने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग छून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं।

जिसका सपना मैंने देखा था। ये शानदार गीत चला ओवरफा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अगर आप भी हैं, मैं भी हूँ, मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ।

महेंद्र कपूर जी और लता जी, ये दोनों मिल के बड़ा आदमी से में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए हैं। और साज है चित्रगुप्त जी का, चित्रगुप्त के साज पर ये गीत पेश हुआ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, आप भी हैं और मैं भी, जैसे मैंने कहा। तो क्या ख्याल है कि हम आपको ये धमाकेदार गीत सुनाए हैं।

नथनिया हाले तो बड़ा मज़ा होए, ये चटपटा चुटकुला गीत हम आपको सुनाए हैं फान हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, ये देखते हैं, ये लॉफिन टोक्यो का है। जी हाँ, लॉफिन टोक्यो इस तरह से है।

फिल्म लव इन टोक्यो में से निकाल कर ये प्यारा गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए ये गीत भी आपको सुना देता हूँ, एवरग्रीन किशोर कुमार। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर

जाने मन एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हमने पेश की। आप भी हैं और मैं भी हूँ। अच्छा, तो अगर आप दोनों हम दोनों हैं आप श्रोता हूँ तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊँ। ये गीत के बोल थोड़ा, इसे सुनिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सुन लीजिए।

फिल्म गैम्बलर में से निकाले हैं निगत एन से इवन तक का, ये देवानंद का गैम्बलर है, ग्रेट गैम्बलर नहीं, गैम्बलर निगत एन से इवन तक का ये गीत लता जी की आवाज़ में और एफ एन ग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, जी हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर आनंद राज आनंद

मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ ये गीत हम आपको सुनाए हैं फिल्म फर्श में से निकाल कर हमने पेश की लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। फौन हिंदुस्तानी पर आप चून हैं, जो लोग चून किए हैं आपका स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम एक सुरेश वादिकर जी के गीत आपको सुनाते हैं। चलो सुरेश वादिकर की आवाज़ में ये गीत।

सुरेश वाडकर आपको सुनाए ये शानदार गीत निगाह है यार ने कि एक ऐसा जादू भर दिया, और ये गीत हमने पेश की आज के कार्यक्रम में। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, जी हाँ, देखते हैं ये प्यारा गीत भी जहाँ तक मेरा ख्याल है फर्श से निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम इसे चला रहे हैं, सुना रहे हैं।

शिकार करने का आए शिकार होके चले, ये गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊं इस तरह से, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दोनों मिलकर आपको सुनाइए ये प्यारा गीत हमने पेश की। चलिए एक गीत हमने प्लेयर में रखे हैं और ये भी लता जी के फिल्म है आओ प्यार करें। जी हाँ, तो चलो सुनते हैं आओ प्यार करें में। और तो गाना तो है लेकिन कौन सा गाना मैं चलाने वाला हूँ लता जी की, ये सुनिए।

Zo, gane se pata chalta, se is toch wat van plan. लता जी की आवाज़ में ये शानदार गीत हम आपको सुनाएं। योजना तो बहुत बनाया मौसम के देखकर, बहरहाल फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने ये गीत पेश की। तो अगर ये गीत पेश की तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत उसके बाद।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर ये गीत पेश हुआ, लता जी की आवाज़ में फिल्म आन मिलो सजना में से हमने निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। अगला गीत हमने प्लेयर में एक रखे हैं, इसकी थोड़ी बयाना बता देते हैं। ये गीत गाया गया है सी रामचंद्रा जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्हीं के साज पर लता जी के साथ फिल्म अलबेला में। तो बात ऐसे है कि अब कौन रात्रि के 12 बजे रात्रि को यहाँ स्टूडियो आएगा और बैठकर आपको ये गीत सुनाएगा, मेरे बस के तो बात नहीं है। शायद कभी साल में एक बार हो जाए कि 12 बजे रात्रि को मैं यहाँ आऊँ स्टूडियो में बैठूँ और आपको पहले बताऊँ कि ये गंगा ये गीत चलाने वाला है, ये नहीं करेंगे। चलिए ये गीत हम अभी आपको सुना देते हैं क्योंकि 12 बजे रात्रि का कौन इंतज़ार करेगा। चलो हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है 12 बजे रात्रि को जलाना चलाना था हम आपको अभी सुना देते हैं इस तरह से।

श्री रणचंद्र के साथ परचितल का रामचंद्र खुद और लता जी के साथ ये द्वैत हम आपको सुनाए हैं फिल्म अलबेलाल में से निकाल कर। अब ये तो ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 12 बजे रात्रि को कोई हमारे को लिखा या मैं आकर ये गीत आपको सुनाऊं तो लगे हाथ हमने अभी आपको सुना दी। यूँ समझिए कि 12 बजे रात्रि है, आपने आँख मूंद ली है, रात हो गया। बहरहाल फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो चुन किए हैं, इस मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।